हाँ कर्च तराई बिस्मन बिस्मे कहन कह आहत गण गंधर्व सिद्ध अर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक।

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरना राम तपत नाकत बुझै बिन स्वामी सरना राम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे जप जीवा हर हर चरना। अमें सरोवर पियो अमें सरोवरो पियो हर हर नाम आराम संतै संग मिले। जप पूर्ण काम आराम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे आनंद अंदन सदा साचा सर्वगुण जगदीसर। अगणत ऊचिया पार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया तेरा कोई ना बेली राम। कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते जांबा गौनिया केली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करे सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे अकिरत कान।

गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया तपत थम गल लातया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पत ते उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम। पत ते उदाहरण शरण सुवामी कृपा निदयाला। अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला। शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम। सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइए। भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइए। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया। बिनवंत नानक आप मिलिया बहुत कतू ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवां संत सुनो बिनंतिया। स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना। शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे। अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम। माया मोहे मगन कड लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने। अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी। बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोधिया पार करते मोहे नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी। नानक शरण समरथ स्वामी पैज रख मोरी। जां ते विछड़िया तिन्हां मिलाया राम। साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए। सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया। नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवां संत बोल सो तरमीड़िया। मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चल बिना गोविंद नामा। देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोभा हस्त कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद भरे। जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम। बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही। नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है।
ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੂਝੈ ਨੈ ਕਾਮ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਕੇਤਿਆਂ ਪਛਤਾਨੇ ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੀ ਨਾ ਰਾਮ ਪੂਜਾ ਗਹਿ ਕਾਢ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦੀਨਾ ਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਹਰਿਆ ਰਾਧੇ ਸਗਲ ਕਲਮਲ ਦੁਖ ਜਲੇ ਮਹਾ ਧਰਮ ਸੋ ਦਾਨ ਕਿਰਿਆ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਸੇ ਚੱਲੇ ਰਸਨਾ ਅਰਾਧਾ ਏਕ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਪੀਨਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੋ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਸਰਬ ਗੁਣ ਪਰਬੀਨਾ ਬਿਹਾਗੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਲ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਭੇਦੀ ਹੈ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਜਿਨ ਹਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਿਫਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੈ ਸੋ ਖਰਚੈ ਖਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਏ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਜਗਤ ਤਨਹੀਣ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੇ ਖਾਏ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ

जो हर प्रभाव है सो थी सब करन तेरा कराया सालाहे हो हर सब नाते वड्डा जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जग जीता सब कोए नामे कार्य सिद्ध है सहजे होए सो होए गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध महला चौथा। अंधे चानन ता जा सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़े सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै तदों पुछना सेवक बिया। तदो क्या को लेवै क्या को देवै जा अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया। आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा। अंदन सहज प्यार सदा आनंद गावै गुण साचे अर्ध उर्द उरतार। अंतर प्रीतम वसिया तुर कर्म लिखिया करतार। नानकिया मिलाया नु आपे कृपा तार। महला तीजा कहया कथया ना पाईऐ अंदर रह सदा गुण गाए। विण कर मैं कने ना पायो भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र आप कथा आप भिजै। आपे ही बै पूजे करता आप पर पंच करी जै। आप निर्विर तो आप निर्विरती आपे कथ कथी जै। आपे पुन सब आप कराए आप अलिप्त वर्ती जै। आपे दुख सुख देवै करता आपे बख्श करी जै। सलोक महला तीजा सेखा अंदरों जोर छड तू पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किने ना पायो पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे अंते होए सब शार। कर्म धर्म सुच संयम करे अंतर लो विकार। नानक जे मनमुख कमावै सो थाए ना पवै दरगै होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे। आप समुंद आप है सागर आपे ही विच रतन धरे। आप लहाए करे जिस कृपा जिसनों गुरमुख करे हरे। आपे पवजल आप है बोए था आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझे सरे। श्लोक महला तीजा सदगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। नाम पदार्थ पाई है अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटिए हमै ममता जाए। उत्तम पदवी पाई है सच्चे रह समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कलयुग बोइथ होए। गुरमुख होवै सो पार परै जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए। नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पर से आप तात है।

पहला काया लाहने आप मद मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल हित मद पीता नानका बहुते खटिया बिकार ज्ञान गुड़ सलाह मंडे पौ मास आहार नानक हो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत तिसकी तार सतसंग स्यो मेलाप होए लिव कटोरी अमृत परी पीपी कटे बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे शिव शंकरा महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोष्ट आप उपदेश आपे सुर स्वरूप सियाणी आपना चोज कर वेखै आपे आपे सबना जिया कह जानी श्लोक महला तीजा एहा संध्या प्रवान है जित हर प्रभ मेरा चित आवै हर स्यों प्रीत उपजै माया मोह जलावै गुरप्रसादी दुबदा मरै मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै मर जमै होए खुवार महला तीजा प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिलया मेरी प्यास गई फिर पाया कर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकर दास पाया आपे दास अठ वर्ण उपाया नो आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बक्से करे दया आपा भुल ना भुले कभी सब सच तपावस सच थया आपे जिन्ना बुझाए गुरमुख तिन अंदरों दूजा भरम गया श्लोक महला पंजवा हर नाम ना सिमरै साध संग तै तन उड़े खेहे जिन कीती तसै ना जानी नानक फेटा लूनी देहे महला पंजवा घट वसै चरणार बिंद रसना जपै गोपाल नानक सो प्रभ सिमरिय तिस देही कौपाल पौड़ी आपे आपे अड़सठ तीर्थ करता आप करे इशनान आपे संयम वरतै स्वामी आप जपाए नाम आप दयाल हुए पौखंडनो आप करै सबदान जिसनो गुरमुख आप बुझाए सो सद ही दरगै पाए मान जिस दी पैज रखै हर स्वामी सो सच्चा हर जान श्लोक महला तीजा नानक बिन सतगुर भेटे जग अंध है अंधे कर्म कमाए शब्द स्यों चेतना लावई जित सुख वसै मन आए तामस लगा सदा फिराए एहनिस जलत बिहाए ज्योतिष भावै सो थीऐ कहना किछु ना जाए महला तीजा सतगुरु फरमाया कारिए करे हो गुरु द्वारे होए कै सब समाले हो साहिब सदा हजूर है परमे के छौड़ कट कै अंतर जो तरे हो हर का नाम अमृत है दारू यो लाए हो सतगुर का पाणा चित रखो संजम सच्चा ने हो नानक अथ है सुख है अंदर रख सी अगे हर स्यों केल करे हो पौड़ी आपे पार अठारे बनस्पत आपे ही फल लाए आपे माली आप सब सिंचै आपे ही मुए पाए आपे करता आपे भुगता आपे दे दिवाए आपे साहेब

सब कोए गुर प्रसादी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै ता सद जीवन होए। पौड़ी जाय आप किरपाल होवै हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावै। आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर पावै। अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै। धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चख चख आवै जावै। श्लोक महला तीजा। राम राम करता सब जग फिरै राम ना पाया जाए। आगमा गोचर अत उड़ा अतुल ना तुलिया जाए। कीमत कने ना पाईया कितना लिया जाए। गुर कै शब्द भेदया इन विद वसिया मन आए। नानक आप अमेव है गुर कृपा दे रहा समाए। आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा। ए मन एहो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए। तोटा मूल ना होवई तोटा मूल ना होवई हानत कदे ना होए। नानक गुरमुख पाई है जा कौ नदर करे। पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वरतदा आपे ही जाहर। जोग छत्ती गुबार कर वरतिया सुन्ना हर ओथै वेद पुराण ना सास्ता आपे हर नर हर। बैठा ताड़ी लाए

तय कार्य अपण तामस बहुत अहंकारा। किसन सदा अवतारी रूदा कित लग तरह संसारा, गुरमुख ज्ञान रते जुगे अंतर चूकै मोह गुबारा। सतगुर सेवा ते निस्तारा गुरमुख तरह संसारा, साचा नर ते बैरागी पाए मुख द्वारा। एको सच वरतै सब अंतर सबना करे प्रतपाला, नानक इक्स बिन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला। अवढंस महला तीजा, गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान, गुरमुख साचा लगै ध्यान। गुरमुख मन मेरे नाम संभाल, सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ। गुरमुख जात पात सच सोए, गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए। गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए। गुरमुख शब्द सच करनी सार, गुरमुख नानक परवारै साधार। वढंस महला तीजा, रसना हर साध लगी सहि सुभाए, मन तृप्तिया हर नाम ते आए। सदा सुख साचै शब्द विचारी, अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ। अखी संतोखिया एक लिव लाए, मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए। देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए, नाम परमल हृदय रया समाए। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग। वढंस महला तीजा, पूरे गुरते नाम पाया जाए, सच्चा शब्द सच समाए। ए मन नाम निदान तू पाए, अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ। गुर कै शब्द विचों मैल गवाए, निर्मल नाम वसै मन आए। परमे पूला फिर संसार, मर जन्मै जम करे खुवार। नानक सेवड भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन वसाया।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै। ना जियो मरै ना कबहू चीजै, वडभागी गुरपुरा पाईऐ। गुर कृपा ते प्रभु त्याईऐ रहाओ। हर रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपै निहाला। जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु तू।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझै कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आ वजावना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आखिया आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब

राम ए चुका वहे गुर प्रसादी करो कृपा लेहो जम उबारे जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा लाख्या पारा क्यों कर करो बेनंती हूं आख ना जाना नदर करे ता सच पछाणा साचो पछाणा ताम तेरा जामया बुझावे दुख भूख संसार की सस हो चुकावे बिनवंत नानक जाए सहसा बुझै गुर विचारा वड्डा साहब है आप अलख अपारा तेरे बंके लोयन दंतरी साला सोहने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेलियो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेली हो

नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया। हमें मार मुइये तू चल गुर कह पाए, हर वर रावे सदा मुइये नहीं कर वासा पाए। शब्द बजाए सदा सुहागण नारी, परली आला जुबन बाला अंधन कंध सवारी। हर वर सुहागो मस्तक भागो, सच्चे शब्द सुहाए। नानक कामण हर रंग राती, जा चले सतगुर पाए। वडंस महला तीजा, गुरमुख सब वापार पला, जे सहजे की जय राम। अंध नाम वखाणिए लाहा हर रस पी जय राम, लाहा हर रस लीजय हर रा विजय। अंधन नाम वखाणे गुण संग्रह अवगुण विकणे, आपै आप पछाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई। सच्चा शब्द रस पी जय नानक, हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय। गुरमुख खेती हर अंतर बीजी है, हर लीजै शरीर जमाए राम। अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम। लाहा परथाए हर मन वसाए, तन खेती वापारा। हर नाम ते आए मन वसाए, बूझे गुर बिचारा। मनमुख खेती वणज कर थाके, तृष्णा भुख न जाए। नानक नाम बीज मन अंतर, सच्चा शब्द सुवाए। हर वापार से जन लागे, जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमती मन निज कर वसिया, सच्चा शब्द बैरागो राम। मुख मस्तक पागो, सच बैरागो साच रते विचारी। नाम बिना सब जग बौराना, शब्दे हमें मारी। साचे शब्द लाग मत उपजै, गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिलै पौ पंजन, हर रावै मस्तक भागो। खेती वणज सब हुक्म है, हुक्मे मन वड्याई राम। गुरमती हुक्म बुझियै, हुक्मे मिल मिलाई राम। हुक्म मिलाई सहज समाई, गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुरते पाई, सच सवरन हारा। पौ पंजन पाया आप गवाया, गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन, अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई। वढांस महला तीजा, मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो। अपने घर तू सुख वसै, पोहे ना सकै जम काल जियो। काल जाल जम जोहे ना सकै, सचै शब्द लिवलाए। सदा सच रता मन निर्मलो, आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विगुति, मनमुख जोही जम काल। कह नानक सुन मन मेरे, तू सदा सच संभाल। मन मेरे आय अंतर तेरा निदान है, बाहर वस्त ना पाल। जो पावे सो पुंच तू, गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे, अंतर हर नाम सक।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजै पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेव ने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक काम हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुर अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मै गुणी समाई राम गुण मै गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल वेखावणी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख न होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखियां नु ते सच्चा कह दरबारा राम खोटे दरगह सुटियां उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुग्ध गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखिया नु ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछू ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजै नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पै करै पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया के वापारा राम
माया केवा पारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बेका कीड़ा बिकस्यों लागा बिष्टा मैं समाई जो तुर लिखिया सोए कमावै कोई न मिटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूर्ख कूक मोहे गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुधना काई राम गुरमुख यो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साज समाई सच परे पंडारा गुरमुख होवै सोई बूजै साज सवारन हारा आपे मेले सो हर मिलै होर करना किशु ना जाए नानक विण नामे परम भुलाया इक नाम रते रंग लाए वडहंस महला तीजा ए मन मेरे आयावा गौण संसार है अंत सचन बेड़ा राम आपे सचा बख्श लए फिर होए ना फेरा राम फिर होए ना फेरा अंत सचन बेड़ा गुरमुख मिलै वड्याई साचा रंग राते सहजे माते सहजे रहे समाई सच्चा मन पाया सच वसाया शब्द रते अंत नबेरा नानक नाम रते से सच समाने बहुर ना पव जल फेरा माया मोह सब बरल है दूजे पाए खुआई राम माता पिता सब हित है हेते पलचाई राम हेते पलचाई प्रभ कमाई मेट ना सकै कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखै ते जेवड़े अवर ना कोई मन मुख अंदा तप तप खपै बिन शब्द सांत ना आई नानक बिन नामै सब कोई भुला माया मोहे खुवाई एहो जग जलता देख कै भज पए हर सरनाई राम अरदास करी गुर पूरे आगे रख लेवो देहो बढ़ाई राम रख लेवो सरनाई हर नाम बढ़ाई तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता जत सत संयम कर्म कमावै बिन गुरगत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे साई उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम आपे दे बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर रचाखिया दर सचै सदा है साचा साचै शब्द सुपाखिया घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवे सांत पाई मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई हों जीवा सतगुर देख सर से राम हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम जप हर हर नाम कमल पर गासे हर नाम नवंग निद पाई हों मैं रोग गया दुख लाथा हर सह समाध लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसे हों जीवा सतगुर देख सर से कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा राम हों मन तन देवा तिस काट सरीरा राम हों मन तन काट काट तिस देई जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुखदाते
देहो सतगुर चरण हम धूरा, कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम, हर दानो हर दान देवै हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पौ पागा, सेवक पाए मिले वडभागी जिन हर जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए, मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा, हाँ गुरबिनु हाँ गुरबिनु खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम, सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम त्याया। जिस कारण हाँ टूंढ टूंढेंदी सो सज्जन हर कर पाया, एक दृढ़ हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हाँ गुरबिनु खरी निमाणी, जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सिरे वै हम लागै तिन कै पाए राम। हर हर चरण सिरे वै तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ त्याया, तू वरदाता अंतर जामी मेरी सरदा पू हर राया। गुरसिख मेल मेरी

प्यारे राम हर नामो हर नाम सुनाए, मेरा प्रीतम नामा दारू राम। हर हर नाम मेरा प्राण सखाई, तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता, गुरमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए, हर आपे आप सवारे। हम वारी गुरसिख मीत प्यारे। हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम। हरे आपे मेले करै सो होई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे, अवर न करना जाई। बहुत सियाण पो लया ना जाई, कर थाके सब चितराई। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिने अवर न कोई। हरे आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञाना देर बिनासे। सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास गिरासे। जिन कौ हर प्रभ कृपा तारी, ते सतगुर सेवा लाया। हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया। मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन ना जाई राम। हर नामो हर नाम देवे, मेरा अंत सिखाई राम। हर हर नाम मेरा अंत सिखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया। जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही, तिथे हर हर नाम छडाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।

बेखम पयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी तेजन दे हे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन धन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जन आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वडहंस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलो किया करता हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुमिन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वडभागी हर रंग हर बने हर मिले सुवामी अंतरजामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाण नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वडभागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुर जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वडहंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां रोवे बिरहा तन का अपना साहेब समाले हां साहेब समाल है पंथ निहाल है असा पे उठे जाना जिसका किया तिन ही लिया हुआ तसे का पाना जो तिन कर पाया सो आगे आया असी के हुक्म करे हा आवो मिलो सहेली हो सचड़ा नाम ले हां मरण ना मंदा लोका आखिए जे मर जाना ऐसा कोए सेवो साहेब समर्थ अपना पंथ सुहेला आ गए होए पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आ गए मिले वडाई भेटे स्यों जावो।

मरण मुन सासुरिया हक है, जो होए मरण परवानो, सूरे से ही अग्या खिया, दरगह पावे साची मानो, दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे, कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पहु पागे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो, मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो, नानक किसनो बाबा रोई है, बाजी है ओ संसारो, कीता वेखै साहबे अपना, कुदरत करे बिचारो, कुदरत बिचारे तारण तारे, जिन किया सो जाने, आपे वेखै आपे बूझै, आपे हुक्म पछाणै, जिन किश किया सोई जाने, ताका रूपया पारो, नानक किसनो बाबा रोईऐ, बाजी है एहो संसारो, वडहंस महला पहला दखणी, सच सरंदा सच्चा जानिऐ, सचड़ा पर्वत गारो, जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा लखिया पारो, दोए पुड़ जोड़ विछोड़िआं, गुरबिन कोरिआं दारो, सूरज चंद सिरजियां, अहनिस चलत विचारो, सचड़ा साहेब सच तू, सचड़ा देह प्यारो, रहाओ, तुद सिरजनी मेदनी, तुद सिरजी मेदनी, दुख सुख देवन हारो, नारी पुरख सिरजिया, बिख माया मोह प्यारो, खानी बाणी तेरिया, देह जिया आधारो, कुदरत तख्त रचाया, सच नवेण नहारो, आवागमन सिरजिया, तू थिर करना हारो, जमन मरना आए गया, बदक जियो बिकारो, पूंडड़ै नाम विसारिया, बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो, गुण छोड़ बिखलदिया, अवगुण कावण जारो, सदड़े आए तना जानिया, हुक्म सचे करतारो, नारी पुरख विछुनिया, विछड़िया मिलन हारो, रूप ना जाने सोहनिया, हुक्म बदी सरकारो, बालक बिरत ना जाननी, तो नहेत प्यारो, नौदर ठाके हुक्म सच्चा, हंस गया गैनारे, सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया, मृत कड़ा अंगनड़े बारे, सुरत मुई मरमाइए, महल रुनी दरबारे, रवो कंत मेलिहो, सच्चे के गुण सारे, जल मल जाली ना वालिया, कपड़ पटिया बारे, वाजे वजे सच्ची बाणिया, पंच मोए मन मारे, जानी विछुनड़े मेरा मरण भया, त्रिग जीवन संसारे, जीवत मरे सो जानी है, फिर सचड़ा हित प्यारे, तुसी रोवो रोवन आई हो, झूठ मुठी संसारे, हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया, फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे, कार कार कंत महेलिया, रूड़े हित प्यारे, मैं फिर सच सलाहना, और ऐसी अड़िए नाम पतारे, गुर मिलिया वेस पलटिया, सा तन सच सिंगारो, आवो मिलो सहेलियो, सिमरो सिरजन हारो, बैयर नाम सुहागणी, सच सवारन हारो, गावो गीत न बिरहड़ा, नानक ब्रह्म विचारो, वडहंस महला पहला, जिन जग सिरज समाया, सो साहेब कुदरत जानो वा, सचड़ा दूर ना पाली है, कड़कड़ शब्द पछाणो वा, सच शब्द पछाणो, दूर ना जानो, जिन एह रचना राची, नाम ते आए ता सुख पाए, बिन नामे बिड़काची, जिन थापी बिद जाने सोई, क्या को कहे वखाणो, जिन जग थाप वताया जालो, सो साहेब परवानो, बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसारो वा, सिर सिर सचड़े लिखिया, दुख सुख प्रभ विचारो वा, दुख सुख दिया जेहा किया, सो निभै जी नाले, जेहे कर्म कराए करता, दूजी कार ना पाले, आप निरालम तंदे बांधी, कर हुक्म छडावन हारो, अज कल कर दिया काल व्यापै, दूजे पाए विकारो, जम मार्ग पंथ ना सुजई, उजड़े अंध गवारो वा, ना जल लेप तो लाइया, ना भोजन प्रकारो वा,
ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਾਪੜ ਸਿੰਗਾਰੋ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਉਬਉ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ ਇਬਕੇ ਰਾਹੇ ਜਮਨ ਨਾਹੀ ਪਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਪਾਰੋ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਕੋ

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरै ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़ आरे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप पाए ओनो या

अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यार।

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, आखिर मैं पई पराई। नाम दान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहाओ, जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदिया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। शब्द सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सभा मैं सहज ना चाखिया। जेबा रस नहीं राई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बाधा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नदर करे ता अखी वेखा। कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वडियाई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरै टकसाला। मेरे साहिबा।

नानक नाम रताय करंगी शब्द सवारण हारा सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर कट अंतर है सासा एक पालो खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम्हें आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटों वारिया सद ही तेरे नाम विटों बल जाई रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जी वाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होवा हर वसिया मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यो रहया समाई शब्द ना जाने से अन्ने बोले से किते आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम्मै वारो वारा बिष्टा के कीड़े बिष्टा माहे समाने मनमुख मुग्द गुबारा आपे कर वेखै मार्ग लाए भाई तिस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई न मिटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसिया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई सोरठ महला तीजा गुरमुख भगत करै प्रभु पावै अंदर नाम वखाणे भगतां की सार करै आप राखै जो तेरे मन पाणे तू गुणदाता शब्द पछाता गुण कै गुणी समाणे मन मेरे हर जियो सदा समाल अंत काल तेरा बेली होवै सदा निभै तेरे नाल रहाओ दुष्ट चौकड़ी सदा कूड कमावे ना बुझै विचारे निंदा दुष्टि ते किन फल पाया हर नाक्ष नखै बिदारे प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो ले उबारे आप सकाओ बहु भला कर जाने मन मुख मत ना काई साधु जन की निंदा व्यापे जासन जन्म गवाई राम नाम कदे चेतै नाही अंत गए पछताई सफल जन्म भगता का कीता गुर सेवा आप लाए सबदे राते सहजे माते अंदन हर गुण गाए नानक दास कह बेनंती हौ लागा तिन कह पाए सोरठ महला तीजा सो सिख सखा बंद पह पाई जे गुर के पाने विच आवै अपने पाने जो चले पाई विछड़ चोटां खावै बिन सतगुर सो कदे ना पावै पाई फिर पछोतावै हर के दास सुहेले पाई जन्म जन्म के किल बिख दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ एहो कुटुंब सब जी के

बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई, मनमुख दूजै पाए तो कुटै, मनमुख कर्म करै पाई पल्लै किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन वरव्या पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है पाई, जे गुर सेवा चित लाए, नानक नाम हर पाई पाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए। राम नाम लग छुटिया पाई, पूछो ज्ञानिया जाए। मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए, हर जियो तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै पाई, नाए विसरिया मर जाए, अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, पवजल पार उतार, जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उतार। गुर सरनाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए, नानक नाम बेड़ा नाव तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, होर थै सुख नाही। हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया, मरजन मैं रोवै ताही। प्राणी सतगुर सेव सुख पाए, सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए रहाओ। त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै, हर रा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सोवड भागी, जिसनो वाह मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से, विचों आप गवाए। एहो जग अंदा सब अंध कमावै, बिन गुर मग ना पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै, करै अंदर सच पाए। सोर

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सहिस माणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किलबिख कटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुख अंदा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हों मैं बंधन कमाए जमन मरन सरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हों मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम।

संत संग जाका मन शीतल ओह जाने सगली ठंडी हम मैं रोग जाका मन व्यापत ओह जन्म मरै बिललाती ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पढ़िया ता कौ सर्व परगासा अज्ञान अंधेरै सूजस नाही बहुड़ बहुड़ परमाता सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगै जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। सोरठ महला पंजवां तन संतन का धन संतन का मन संतन का किया संत प्रसाद हर नाम ते आया सर्ब कुशल तब थिया संतन बिनो अवर ना दाता बिया जो जो शरण परै साधु की सो पार गरामी किया रहाओ कोट प्राद मिटे जन सेवा हर कीर्तन रस गाइए इहां सुखिया गै मुख उजल जन का संगवट भागी पाईए रसना एक अनेक गुण पूर्ण जन की केतक उपमा कहिए अगमा गोचर सद अविनाशी शरण संतन की लहिए निर्गुण नीच अनाथ अपराधी।

हर जन को ही सुहावे पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवा हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकर देसा रहाओ तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुणी आरे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाचे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर अथाह लहर मैं तारो तारन हारे माधव तू ठाकुर सिर मोरा इहां उहां तुहारो तोहरा रहाओ कीते कहो मेरे सम्मान करन हार तरन जाने तू दाता मांगन कहो सगली दान देहे प्रभ पाने खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीर ऊंचो अगमे अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद पाया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एहो मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का तोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा।

काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई होरेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पानै अंतरबिद जानै ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोबिंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा बिशरत आन मिलाया। पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई ताकी कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा मन बाइथ।

आए अपने सदगुर के मन पाने, उठत बैठत हर गुण गावे, दुख दर्द भ्रम पागा, कहो नानक ताके पूर करमा, जाका गुर चरणी मन लागा। सोरठ महला पंजवा, रतन शाड कौडी संग लागे, जाते कछु ना पाई है, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदाते आई है। सिमरव हर हर नाम परानी, बिनसै काची देह अज्ञानी, रहाओ मृग तृष्णा यार सुपर मनोरथ, ताकि कछ ना वडाई, राम भजन बिन कामना आवस, संग न काहूं जाई। हाँ हाँ करत बिहाय अवरदा, जी को काम न कीना, तावत तावत नह त्रिपतासिया, राम नाम नहीं चीना। साध बेकार बिखै रस मातो, असंख खते कर फेरे, नानक की प्रपाहे बिनंती, काटो अवगुण मेरे। सोरठ महला पंजवा, गुण गावो पूर्ण अबनासी, काम क्रोध बिख जारे, महाबिखमो यगन को सागर, साधु संग उदारे, पूरे गुर मेट्यो परमान देरा, भज प्रेम भगत प्रभ नेरा, रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया, मंतन रहे अगाई, जत कत पूर रहे हो परमेश्वर, कत आवै कत जाई। जप तप संजम ज्ञान तत बेता, जिस मन वसै गोपाला, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, ताकि पूर्ण काला। काल कलेस मिटे दुख सगले, काटी जमकी फासा, कहो नानक प्रभ कृपा धारी, मंतन पय बिगासा। सोरठ महला पंजवा, करण करावण हार प्रभ दाता, पार ब्रह्म प्रभ स्वामी, सगले जी किए दयाला, सो प्रभ अंतर जामी। मेरा गुरु होवा आप सहाई, सुख सहज आनंद मंगल रस, अचरज पई बढ़ाई, रहाओ गुर की शरण पए पै नासे, साची दरगह माने, गुण गावत आराधना हर आए अपने थाने। जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी, सदबलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूर्ण पै सवारी। गोसट ज्ञान नाम सुन उदरे, जिन जिन दर्शन पाया, पयो कृपाल नानक प्रभ अपना, आनंद सेती कर आया। सोरठ महला पंजवा, प्रभ की शरण सगल पहला थे, दुख बिन से सुख पाया। दयाल होवा पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सदगुर त्याया, प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गावो रंग राता, रहाओ सतगुर नाम निदान दृढ़ाया, चिंता सगल बिनासी।

कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ता कह बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई सोरठ महला पंजवां।

जाकै सिमरणो सब कछ पाई है, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो, जो समय रहा समाई। हर हर सिमरो संत गोपाला, साध संग मिल नाम ते आवो, पूर्ण हो वै काला रहाओ। सार संभालै नित प्रतपालै, प्रेम सहित गल लावै, कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै। सोरठ महला पंजवां, अबनासी जियन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन को बर्तन, बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाई है, बाहुड दुख ना होई रहाओ। वड भागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की तूर नानक दास बंछै, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवां, जन्म जन्म

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश बिनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अबनासी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार सोरठ महला पंजवा। गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई किन्नी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ। अंतर बार थान थनंतर जतगत पेखो सोई नानक गुर पायो वडभागी तिस जे वडियावर ना कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया। रखन हारै राख्यो बारक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की शरण आई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाओ। घर मैं सुख बाहर फुन सुखा प्रभ अपने पहे दयाला नानक बिघन ना लागे को मेरा प्रभ हुआ कृपाला। सोरठ महला पंजवा साधु संग भया मन उद्दम नाम रतन जस गाई मिट गई चिंता सिमरिया नंता सागर तरिया पाई। हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज तन उपजी रोगा कान मिटाई रहाओ। क्या गुण तेरे आख बखाना कीमत कहन न जाई नानक भगत पय अबनासी अपना प्रभया सहाई। सोरठ महला पंजवा गए कलेस रोग सब नासे प्रभ अपने कृपा तारी आठ पहरे आरा दो स्वामी पूर्ण काल हमारी। हर जियो तू सुख संपत रास राख लहो भाई मेरे कहो प्रभ आगे अरदास रहाओ। जो मांगो सोई सोई पावाओ अपने खसम भरोसा कहो नानक गुरपुरा भेटियो मिट्यो सगलियां देसा। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर गुर सतगुरे अपना सगला दुख मिटाया ताप रोग गए गुरबचनी मन इच्छे फल पाया। मेरा गुरपुरा सुखदाता करण कारण समर्थ स्वामी पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो गुरु नानक भय दयाला जय जयकार भय जग पीतर होवा पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंग माण। साचा साहेब

आख्या हर गोविंद नमा निरोवा रहाओ, ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाई, हालत पलत प्रभ दोवै सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक तारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंतर सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेव की आपे राखे, पूर्ण पई बड़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुरपूरे पूरी सब राखी, होए सर्व दयाल रहाओ। आनदिन नानक नाम ते आए, जी प्राण का दाता, अपने दास का कंठ लाए राखे, जो बारक प्रित माता। सोरठ महला पंजवा, कर तीजा चौपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिल पंचों ने सहसा चुकाया, सिकदारो ने पतियाया, उमरावो आ गै चेरा, मिल राजन राम नबेरा, अब ढूंढन कतो ना जाई, गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा, ता सगली मिट्टी पुकारा, लभद अपनी पाई, ता कत आवै कत जाई, तै साच न्याय नबेरा, ऊहा समठा कर समचेरा, अंतर जामी जानै, बिन बोलते आप पिछानै, सर्व थान को राजा, तै अनहद सब दिया गाजा, तिस पै क्या चितराई, मिल नानक आप गवाई। सोरठ महला पंजवा, हिरदय नाम वसायो, घर बैठे गुरु ते आयो, गुरपूरै सच कहया, सो सुख साचा लया, अपना होयो गुर मेहरवाना, आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों, कर आए कर इशनाना रहाओ। साची गुर वडियाई, ता की कीमत कहन ना जाई, सिर साहा पातशाह, गुर भेट मन यो महा, सगल प्राहित लाथे, मिल साध संगत कै साथे, गुण निदान हर नामा, जप पूर्ण होए कामा, गुर कीनो मुक्त द्वारा, सब सृष्ट करे जयकारा, नानक प्रभ मेरे साथे, जन्म मरण पैलाथे। सोरठ महला पंजवा, गुर पूरे कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इसनान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए, संत हो राम नाम निस्तरीय, उठत बैठत हर हर त्याईय, आन दिन सुकृत करिय रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड पागी पाए, कोट जन्म के किल बिखना से, हर चरणी चितलाए, उस्तत करहो सदा प्रभ अपने, जन पूरी कल राखी, जी जंत सा पै पवित्रा, सदगुर की सच साखी, बिघन बिनासन सब दुख नासन, सदगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप पै सब पावन, जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा, साहिब गुनी गहेरा, कर लश्कर सब तेरा, रखवाले गुरु गोपाला, सब जी पहे दयाला, जप आनंद रहो।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाय सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी, सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया, हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा, मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई, हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा, ठांड पाई करतारे ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरन सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखन मैं उपजे।

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर देश सिधायो हुन नहीं संदेश रो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकरो सगरो दुख मिटायो कहो नानक हो मैं पीत गुर खोई तो दयार बीठ लो पायो सब रहो अंदेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मिलायो सर्व गुणा निदरायो रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभी माया तारी नाम परयो भगत गोविंद का एह राखो पैज तुम्हारी तो

जैसा बालको पाए सुभाई लख अपराध कमावे कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावे हरे अंतर जामी सब जाने ता किस पै आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूके मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कले सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहन न जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे का सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक

नानक नाम ते आया आद पुरख प्रपाया। सोरठ महला पंजवां जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दय वसाया। सुख सागर गुर पाया ता सही सा सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ। प्रभ की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी। सोरठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया। सर्बनदान सुख पाया गुरे अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वड्याई। मन इच्छे फल पाए।

दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक सच बखाना सोरठ महला पंजवां ऐथै उथै रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप राखे घट घट शब्द सुभाखे गुर के चरण ऊपर बल जाई दिन सरहण सा सा समाली पूर्ण सबनी थाई रहाओ आप सहाई होवा सच्चे दा सच्चा टोवा तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरणाई सोरठ महला पंजवां सतगुर पूरे पाणा ता जपया नाम रमाणा गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी हर के चरण सदा सुखदाई जो इच्छा सोई फल पावै बिरथी आस ना जाई रहाओ कृपा करे जिस प्राण पद दाता सोई संत गुण गावै प्रेम भगत ता का मन लीना पार ब्रह्मन पावै आठ पहरो हर का जस रमणा बखैठ गौरी लाथी संग मिलाए लिया मेरा करतै संत साध पए साथी कर कहली ने सरबस दीने आपै आप मिलाया कहो नानक सर्व थोक पूर्ण पूरा सतगुर पाया सोरठ महला पंजवां गरीबी गदा हमारी खन्ना सगले नशारी इस आगै को ना टिकै बेकारी गुरपूरे एह गल सारी हर हर नाम संतन की ओटा जो सिमरै तिसकी गत होवै उदरै सगले कोटा रहाओ संत संग जस गाया एह पूर्ण हर तन पाया कहो नानक आप मिटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोरठ महला पंजवां गुरपूरै पूरी कीनी बख्श अपनी कर दीनी नित्यानंद सुख पाया थाव सगले सुखी वसाया हर की भगत फल दाती गुरपूरै कृपा कर दीनी विरलै किन्ही जाती रहाओ गुरबाणी गावो पाई गुरबाणी गावै पाई ओ सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सोरठ महला पंजवां गुरपूरा आराधे कार्ज सगले सादे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संतो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाओ गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्मन पाणी नानक दास बखाणी निर्मला कथ कहानी सोरठ महला पंजवां भूखे खावत ला भूखे खावत लाज ना आवै त्यों हर जन हर गुण गावै अपने काज को क्यों अलकाई है जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल सदा सदा सुख पाई है रहाओ ज्यो कामी काम लुभावै त्यों हर दास हर जस पावै ज्यो माता बाल लपटावै त्यों ज्ञानी नाम कमावै गुरपूरे ते पावै जन नानक नाम ते आवै सोरठ महला पंजवां सुख

अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरें पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यन कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना ही ये बसावै। पर तन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागे ओ दुख में संग ना होई रहाओ। दारा

अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यो लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमे पावे हृदय शब्द सदा पैरचिया गुर की कार कमावे। एको चेते मनुआ ना डोले तावत वर्ज रहावे सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावे। मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जेह बा नेत्र सोत्र सच राते जल बुझी तुझै बुझाई। आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई। दुबदा विच बैराग ना होवी जब लग दूजी राई सब जग तेरा तू एको दाता अवर ना दूजा पाई। मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपरे अपार अगम्य गोचर कहने कीम ना पाई। सुन समाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामंग मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामंग कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भक्त दरणामंग। मन मुख झूठ लह पै मानंग आपे ज्ञान अगामंग जिन चाखिया से साध जान ज्यो गुंगे मिठे आई। अकथ का क्या कथिया पाई।

ज्यों चलाए त्यों चालै पाई, होर क्या को करे चतराई। एक परम भुला एक भगती राते, तेरा खेलिया पारा। जित तुद लाए तेहा फल पाया, तू हुक्म चलावन हारा। सेवा करी जे किश होवै अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिलिया किरपा कीनी, एक अमृत नाम आधारा। गगनंतर वासिया गुण परगासिया, गुण मैं ज्ञान ध्यान। नाम मन पावै कह कहावै, तत्तो तत्त वखान। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द जग बोरान। पूरा बैरागी सहज सुभागी, सच नानक मन मानं। सोरठ महला पहला, ते तुकी आसा मनसा बंदनी पाई। कर्म धर्म बंदकारी, पाप पुन जग जाया पाई। बिनसै नाम विसारी, ए माया जग मोहनी पाई। कर्म सबे बेकारी, सुन पंडित कर्माकारी। जित कर्म सुखी उपजै पाई, सो आत्म तत् विचारी रहाओ। शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई, कर्म करो संसारी। पाखंड मैल न चुकई पाई, अंतर मैल विकारी। इन बिद डूबी माकरी पाई, ऊंडी सिरकै भारी। दुरमत कणी में गुती पाई, दूजै पाए खुवाई। बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई, बिन नाम भरम ना जाई। सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई, आवन जान रहाई। साच सहज गुरते उपजै पाई, मन निर्मल साज समाई। गुर सेवे सो बूझै पाई, गुर बिन मग ना पाई। जिस अंतर लोभ के कर्म कमावै पाई। कूड़ बोल बिख खाई, पंडित दही विलोइए पाई। विचो निकलै तथ, जल मथिए जल देखिए पाई। इहो जग इहा वथ, गुर बिन भरम विगुचिए पाई। कटकट देव अलख, इहो जग तागो सूत को पाई। दै दिस बांधो माए, बिन गुर गांठना छूटई पाई। थाके कर्म कमाए, एहो जग परम भुलाया पाई। कहना किछु ना जाए, गुर मिलिया पौ मन वसै पाई। पै मरना सच लेख, मजन दान चंगियाईया पाई। दरगै नाम सेख, गुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई। मन वसिया चूखा पेख, एहो तन हाट सराफ को पाई।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साच अपूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े ते है। गुर बिन अलख न लखिए पाई, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याईया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लए हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका या लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचै, जिन हर

आओ गुर की कार कमावनी पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख न लग गई पाई, हर आप वसै मन आए, फिर का हुक्म ना जान पाई, सा कु लखनी कुनार, मन अठकार कमावनी पाई, विणना मैं कूड़ियार, से गावै जिन मस्तक भाग है पाई, पाए सच्चै बैराग, आंदन राते गुण रवै पाई, निरपौ गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा पाई, सो सेवो दिन रात, सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिसकी वड्डी है दात, मनमुख मैली डुमनी पाई, दरगै नाही थाओ, गुरमुख होवै ता गुण रवै पाई, मिल प्रीतम साज समाओ, एत जन्म हर ना चेत्यो पाई, क्या मोह देसी जाए, किड़ी पवंदी मोहायोन पाई, बिख्या नो लोभाए, नाम समालै सुख वसै पाई, सदा सुख सांस शरीर, नानक नाम समाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर, सोरठ महला पंजवां, कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सब जग जिनै उपाया पाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ, किन कहिया क्यों देखिए पाई, करता एक अकथ, गुरु गोविंद सलाहिए पाई, जिसते जापै तथ, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ, जा कै कर सब किश है पाई, नौनिद भरे भंडार, तिसकी कीमत ना पवै पाई, ऊंचा गम अपार, जी जंत प्रतपालदा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिए पाई, शब्द मिलावनहार, सच्चे चरण सिरेविए पाई, परंपा हो वै नास, मिल संत सभा मन मांजिए पाई, हर कै नाम निवास, मिटे अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवै प्रगास, गुर बचनी सुखी उपजै पाई, सफल सतगुर पास, मेरा तेरा छोड़िए पाई, होइए सब की तूर, कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखै सुने हजूर, जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर, करण करावन समर्थो पाई, सर्व कला भरपूर, प्रेम पदार्थ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावै ता मेल लय पाई, हृदय नाम निवास, गुरमुख कमल प्रगासिय पाई, हृदय होवै प्रगास, प्रगट भया प्रताप प्रपाई, मौल्या तरत आकाश, गुरपूरै संतोखिया पाई, अहन सलागा पाओ, रसना राम रवै सदा पाई, साचा साध सुआओ, करनी सुन सुन जीविया पाई, निचर पाया था ओ, जिस पर तीत न आवे पाई, सो जीअड़ा जल जाओ, बहुगुण मेरे साहेब पाई, हौ तिसके बल जाओ, ओ निर्गुणी आरे पालदा पाई, दे निथावे थाओ, रिजक संबाहे सास सास पाई, गूड़ा जाका नाओ, जिस गुर साचा पेटिए पाई, पूरा तिस करवाओ, तिस बिन कड़ी ना जीविए पाई, सर्व कला भरपूर, सास ग्रास ना विसरै पाई, पेखो सदा हजूर, साधु संग मिलाया पाई, सर्व रहा भरपूर, जिन्ना प्रीत ना लगिया पाई, से नित नित मर दे चूर, अंचल लाए तराया पाई, पौ जल दुख संसार, कर कृपा नजर निहालिया पाई, कीतो ने अंग अपार,
ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਣਾਗਤੀ ਪਾਈ, ਜੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕੱਟਣ ਹਾਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁਖ ਸਾਗਰੋ ਪਿਆਰੇ, ਤਹਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਕਾਢ ਬਿਖ ਪਸਰੀਆ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਸਨੋ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਆਪ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਆਰਾ ਦੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਇਆ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੀ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए धूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगह मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पा प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कून न चली नाल सतगुरु जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंदन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहं बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहयो नगन फिरयो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिली है ए जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मे हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्मया फारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेयै पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावे पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावे नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावे अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लब्बई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहू डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया, दाता करता आप आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत आयो पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया। श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान, कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिया, जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है सतसंगत साधु लग, हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार, मैं मूर्ख लाई है हां गोला लाला तुद, मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया। श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोका विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखा कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिनांतर नाम निवास। महला तीजा। से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे बेकार, मनमुख आप सवारथी कारज ना सके सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुदे आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया, विच हमें लेखा मंगिया फिर आवै जाया, जिन्ना हरे आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुखी उबरे, जिन्नी सच नाम चित लाया बिना मैं जग कमला फिरे, गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिन कौ तुर लिख पाया। महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया, अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खोवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया, बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख्या गम है,
कहो कित बिद पाई है तिस रूप ना रेख्या दृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है। गुर पूरे वे खा लिया गुर सेवा पाई है श्लोक महला तीजा। ज्यो तन कोलू पीड़ी है रतना पूरी डेह जियो वंजे चौखनी है सच्चे संदड़े नेह। नानक मेल न चुकई राती अतै डेह महला तीजा। सज्जन मेंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यो मां जीठे कपड़े रंगे पी पाहे। नानक रंग न उतरै ब्याह न लगे के हे पौड़ी। हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर तंदै लाएंदा। एक ना भगती लाए एक आप खवाएंदा एक ना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा। जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएंदा श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में ना

जुग जुग सुबा हुए पौड़ी तू करण कारण समरत है कर दे। मैं तुझ बिना वरना कोई तुझे आपे सिरज सिरजिया आपे फनगोई। सब को शब्द वरतदा जो करे सो होई। वड्याई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई। गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई। सुध आराग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुवे तुर्क मुवे सिर नाई। ओए ले जा रे ओए ले गाडे तेरी गत दुहू ना पाई। मन रे संसार अंध गहेरा चाहो दिस पसरियो है जम जेवरा रहाओ। कवत पड़े पड़ कपता मुवे कपड़ के दार जाई। जटा तार तार जोगी मुवे तेरी गत इन्हें ना पाई। दर्ब संच संच राजे मुवे गडले कंचन पारी। वेद पड़े पड़ पंडित मुवे रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सबै बिगूते देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किन गत पाई कहे उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम तानो रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है या तन की एह बड़ाई। काहे पहिया फिरतो फूलिया फूलिया। जब दस मास उर्द मुख रहता सोदन कैसे भूलिया रहाओ। ज्यो मधमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया। मरती बार लेहो लेहो करिए पूत रहन क्यों दिया। देहुरी लो बरी नार संग पई आग है सजन सोहेला। मरकट लाओ सब लो कुटम पयो आग है हंस्या केला। कहत कबीर सम

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा, मन रे सरयो ना एक काजा भजियो ना रघुपत राजा रहाओ, बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया, भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तंदीना, राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना, परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी, कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हों हर बिने और ना देखा, नैन रहे रंग लाई या बेगल कह न जाई, हमरा परम गया पौ पागा जब राम नाम चित लागा रहाओ, बाजी गर डंक बजाई सब खलक तमा से आई, बाजी गर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला, कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई, गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता, जा के निगम दूध के ठाटा समुद बिलोबन कौ माटा, ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटे गोशास तुहारी, चेरी तू राम ना कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाओ, तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत सचेरी तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी, चेरी तै सुमत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया, जह बाज ना जिया जाई जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहा ही मुए बिन जीवन नाही, अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ, कस कुंकुम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया, पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाए न मुका और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो तन पाया हर पेट ते आप मिटाया, क्या पढ़िए क्या गुनिए क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई जो सह जन्म लियो सोई, हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोचे बारंबारा रहाओ, अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई, कह कबीर।

हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी काया मांजस कौन गुना जौ कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सठ तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई कह कबीर बिचारी पवसागर तार मुरारी सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कर पर धन लियावै सुदारा बयान लुटावै मन मेरे पूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ छिन छिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा संत हो मन पवने सुख बनया कि जोग प्राप्त गनया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै हाउ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जिवाले खाट मांगो चौपाई सरहाना अवर तुलाई ऊपर कौ मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लबो एक नाव तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तौ जन तीरज पावा नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ जह चिल मिलकार दिसंता तै अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार बीजर तही नेरै नाही दूर निजात मैं रया भरपूर जय अनहत सूर उजियारा तह दीपक जलै शंशारा गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहे समानिया कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा का पहचान शवाई हो तो पै दुगनी मजूरी दहाओ मोको बेडी देहो बताई हो रिबाई बेडी दे न जाई देख बेडी रे उसमाई हमारे बेडी प्राणे आधारा रहाओ बेडी प्रीत मजूरी मांगे जौ को शान शवावे हो लोग को टंब सबोते तोरे तो अपन बेडी आवे हो ऐसो बेडी बर्न ना सको सब यंत्र सब ठाई हो गूंगे महा अमृत रस चाखिया पूछे कह न जाई हो बेडी के गुण सुन री बाई जल्द बांध तू था प्यो हो नामे के स्वामी सी बहोरी लंकप भीखण आ प्यो हो सोरठ करती जा अड़मड़िया मंदल बाजै बिन सावन कन हर

हम बाती, जाओ तुम तीर्थ तौ हम जाती, साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटै जम फासा, भगत हेत गावै रवदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होएगो पसम की ढेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा। चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठावै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रोपो। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैन

पूरे गुरु की साची बाणी, सुख मने अंतर सहि समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जल अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोय, तिस दा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हउ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिलै सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तनासरी महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिने प्रतपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, संत सिंगार रावे प्रभ सोए, हम मैं विच प्रभ कोई ना पाए, मुलों पुला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जो जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साच रते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो होए जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब पर जब गोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दरड़ाई, भगत करे जन्म डियाई पाए, साच रते सुख सह समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारन हार, तनासरी महला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो साच संभाल्यो दुख जाए, साचे शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ को सत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए, गुर कै पाणे चलै ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जाने बाणी, मन मुख अंदे दुख विहानी, सतगुर भेटे ता सुख पाए, हमें विचों ठाक रहाए, किसनो कहिया दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा, तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुवे कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसना बक्से हर दे वड्याई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावै, ता इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा,
ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਲਣਹਾਰਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਹੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਧਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨਿਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਸਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਭਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਾਚਰ ਤੇ ਅਹਿਨਸ ਬੈਰਾਗ। ਚਹੋ ਯੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੇ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦਿਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਧਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਹਿ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾਇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖ ਕਪੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਾਉ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੀ ਐਸੀ ਬਸ ਕਰੀਜੈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਹਾਮੀ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਉ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵਿਖ ਮੋਰਚਾ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਰ ਬੈ ਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਘਾਟੀ ਕਰਤੇ ਉਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰਿ ਉਰ ਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ। ਜਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ, ਤਿਨਕਾ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ। ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾਉ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜਾਤ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਤੁਮ ਠਾਕਰ ਹਮ ਸਾਂਗੀ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸਵਾਮੀ,
हम तैसे बुलक बुलागी, क्या हम किरम नानक कीरे। तुम वट पुरख वडागी, तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ। हम क्यों कर मिलया पागी, हर प्रभ स्वामी कृपा तारो। हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभ। हम हर कथा कथागी, तनासरी महला चौथा। हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमुख पल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ, ऐसा संत साध जिन पाया। ते वड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी। हम हर लोच लुचानी, हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी। जिन जपियो से तृप्तानी, हर हर अमृत पी तृप्ता से। सब लाथी पूख पुखानी, जिनके वडे भाग वड उच्चे। तिन हर जपियो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी। जन नानक दा दसानी, तनासरी महला चौथा। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता, हम लावे अपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ। मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना। हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर होए। हर मिलिया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी। हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो। हम साज जना पगराली, तनासरी महला चौथा। हर हर बूंद पय हर स्वामी, हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सको एक राती, जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ, तुम हर सरवर अत अगाह। हम लह न सके अंत माती, तू पर पर अपरंपर स्वामी। मित जानो अपन गाती, हर के संत जना हर जपयो। गुर रंग चलू लै राती, हर हर भगत बनियत सोभा। हर जपयो उत्तम पाती, आपे ठाकुर आपे सेवक। आप बनावे पाती, नानक जन तुमरी शरण आई। हर राखो लाज पगाती, तनासरी महला चौथा। कलयुग का धर्म कहो तुम भाई, किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना। हम मांगी भगते का की रहाओ, हर के सेवक से हर प्यारे। जिन जपयो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया। सब छूटी जम की बाकी, हर के संत जपयो मन हर हर। लग संगत साध जना की, दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी। शिव चरयो चंद चंदा की, तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर। तुम आपे आप आपा की, जन नानक कहो प्रभ कृपा की। जय कर दसन दास दसा की, तनासरी महला चौथा। कर पंजवा दोपद एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। उर धार विचार मुरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने।
अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्यावो इव हर प्रभ मेरा पीने तनाश्री महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम ते आई हर दर गै पावै फिर जन्म ना आवै हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम और तारी नानक हर पय है सिखाई तनाश्री महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवै दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्टो तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपयो गत हे पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी तनाश्री महला चौथा चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावै जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामै नाम हर जसियु तुम काम जो गावै सुने तेरा जस स्वामी हम तनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हों पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनाश्री महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हरि उत्तम बानी गाव्या सुनिया तनका हर थाए पावै जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनाश्री महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मानो सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी वडपागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना तनाश्री महला चौथा

सहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद पव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट प्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वासकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे सर्व जियां के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करे सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मुरारे ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदही संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया कौ लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंदो अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवां कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग

गुरु की टहल गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवां जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख सोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवां वडे वडे राजन यार पूमन ताकी त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यो पावक ईंधन नहीं त्रप बिनहर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसाओ रहाओ मौल।

चंदन लेप होत देह कौ, सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत, बिखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी, इस युग में पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ, काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे, गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो, नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा, पानी पखा पीसो संत आगे। गुण गोविंद जस गाई, सास सास मन नाम समारे, विश्राम निद पाई। तुम करो

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन था प्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना, जा को रे करम पल्ला तिन ओट गही संत पल्ला। तिन नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजर तारे रहाओ। सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले रहाओ। निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोइथ पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई नव निध रिद सिधार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रव रया सर्व ठाई रहाओ। ता को कोई न पहुंच नहारा, जा कै अंग गुसाई। जम की त्रास मिटै जिस सिमरत नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा दर्भवंत, दर्भ देह गर्ब है भूमवंत अभिमानी। राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमार है, जैसा बित तैसा हुए वर्त है, अपना बल नहीं हारे रहाओ। आन त्याग पय के आसर सरन सरन कर आए, संतानुग्रह

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरै संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कह सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बानै जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी होय अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परोरवाल रस रस गुण गाव।

महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने उपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूर ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहूं जात सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पई हमारी गात। हरहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती रहाओ।

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगेओ। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिखिया मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मद अंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवां मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दुवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवां तृष्णा।

जय जय देखो तै तै स्वामी, कोई न पहुंचन हार। जो जो करे अवग्या जन की, होए गया तत्सार। करन हार रखवाला होवा, जा का अंत न पारा वार। नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काढे मार। तनासरी महला पंजवा, करनामा पड़ताल। एको अंकार सतगुर प्रसाद, हर चरण सरण गोबिंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ धारो। कृपा करता रहो, पूजा गै कूप ते काढ लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध, माया के बंद। अनक दोखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना आन न रख नहारा। नाम सिमरावो सरन सूरे, पत त्यो धारणा। जी जंत तारना, बेदो चार नहीं अंत पायो। गुणै सुख सागरा, ब्रह्म रतनागरा। भगत वछल नानक गायो। तनासरी महला पंजवा, हलत सुख पलत सुख, नित सुख सिमरनो। नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणे पाप चराणे। साध संगत मिल मुआ जीजै रहाओ। राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महांत कह। आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लह। सरण समराथो अकाथया गोचरा, पत ते उदारण नाम तेरा। अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा। तनासरी

आओ वड़े पाग पेटे गुरदेवा कोट प्राद मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार गुरदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जन खिन मैं तारा।

जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डराओ। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजो, पस ज्यो उदर भरो। कहो नानक प्रभ बिरध पछाना, तब हों पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद गुरसागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। हर रस चोग चुगै प्रभावै, सरवर में हंस प्राण पत पावै। क्या पग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबै मैल ना जाए। रहाओ रख रख धर्म रख रख चरण धरे विचारी, दुबदा छोड़ पै निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आवन जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सह समाए। सरवर मैं हंस, हंस मैं सागर। अकथ कथा गुरबचनी आदर, सुन मंडलिक जोगी बैसे। नारना पुरख कहो को कैसे, त्रिपवन ज्योत रहे लिव लाई। सुर नरनाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूला नाथ आधारी। गुरमुख भगत सहज बिचारी, भगत वछल पै काटन हारे। हमें मार मिले पगतारे, अनक जतन कर काल संताए। मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइऐ रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, सचो ठाकर सच प्यारा। तन मैं मनुआ

अन क्यों पाव करो माया को बचित धरो मेरी मेरी करत सद ही विहावै कोई ऐसो रे पेट संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकर स्यो मेरा रंग लावै।

मन कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन सनाना सगलिया शर्म कीने मनुआ नह पतीने बबेकहीन देही तोए कोई पाई है रे पुरख बिधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कही ना लेखै जिस भेटिए सफल मूर्त करै सदा कीर्त गुर प्रसाद को नेत्रों पेखै मन अठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल जो ध्यान लावै माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई तिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरभय गोबिंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाओ दूजा तनासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पूर्व सदा दसहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरणी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन ने सा तीर्थ मजना साचना लागै मैल क्या मल तोई है गुणे हर परोए किसको रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवै आ पारस परम ध्यानी साच साचे पावै आनंद अंदर हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो साला हे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे बेणी ता संगम सत सते आराधे अकंकार साचा नित दे चढ़े सुवाया गत संग मीता संत संगत कर नजर मेल मिलाया कहन कह सब कोए केवड़े आखी है हम मूर्ख नीचा जान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा कूच कर आवे बिखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट ना भगत भंडारी परपुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सकै कोई आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहब अगमा गोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर ना कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए नबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच मैं साहि समाना आपो पाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुरते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहेब अवरना दूजा नाम तेरे वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सरंदिया जियो एक साहब दोहरा वाद वधंदिया जियो दो राह चलाए हुक्म सवाए जन्म वा संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा नानक साहेब सब संजापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो
ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਨਾਮ ਤਸਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਣੇ ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਐ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਣੇ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਵਿਰਲਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹੰਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੋ ਆਥ ਕਿਉ ਦਰ ਜਾਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸਾ ਜੀਓ ਸਚ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸਚ ਵਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਪਛਾਣਾ ਦੀਨਾ ਨਾ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਦਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧਰੋ ਫੁਰਮਾਈ ਆ ਮੁਆ ਮਨ ਮਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮੀਠਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਰ ਸਿੰਘ ਮੂਠੜੀਏ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈਆ ਜੀਓ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆੜਾ ਲੇਖ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਜੀਓ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਸੀ ਗੁਣੀਆ ਚਾਰ

आव कटै तन छीजै, काल अहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिद कीजै। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरतै, आपा पशु ना बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूझै। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जानै, ता को अचरज काहो, ज्यों जल जल में पैस ना निकसै, त्यों टुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पूरा, जाओ तन काशी तजै कबीरार, मैया कहा निहोरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम ना भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मग मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोकै जैबो, ओछे तप कर बाहुर आबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज

हमरा मन तनो राम को नामा राम सिमरो राम सिमर पाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधकाई रहाओ। बनता सुत देहे ग्रहे संपत सुखदाई इनमें कछ नाहे तेरो काले अवधियाई अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन प्रमे तउ लाज ना आई राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई जिन तरन तर मुंड बलाए।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुनरे मैंजी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारना पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

दस अठा अठ सठे चारे खानी एह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी दो क्रिस्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे कोल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी बिसव का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बाधवा। कर्म कर अरण पिंगलारी अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पारदी। कर्म कर कपाल मफीट सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी दादी ले लंका गढ़ ओ पाड़ी ले रावण बाण साल बेसाल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीट सरी पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन। ताचे मोहे जापी अले राम चे रामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे।

रामा भगत रामानंद जानै, पूर्ण परमानंद बखानै, मदन मूर्त पैतार गोबिंदे, सैन पणै पज परमानंदे पीपा।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिया हर ओ महाराम, कर कीर्तो जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावाहा, मोको तार कृपा मिलिय गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वासे आवै, मंतन हर ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा, दीन दयाल कृपा कर माधव,

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपो ताड़ी लाहा, आपे ही आप आवर्त है, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा, आपे सतगुर सुमंद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतनयो महाराम, सखी मिलाओ मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम्यो महाराम, आपे वरदाना वरसाहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभाव, गुण नानक नाम्यो महाराम, जैत सरी महला चौथा, मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा तार मधसूदन, मिल सत संग यो महाराम, हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जपियो महाराम, सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम न पुजै पुजाहा, हर हर अतुल तोलियत पारी, गुरमत जपियो महाराम, सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किल विख मै

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कभू चूरो बुझ प्रभ को। जैत सरी महला पंजवा लोड़ इंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम अंधेरा। थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहंग छोड़ियो है त्याग रहाओ। जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड़ पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग। जैत सरी महला पंजवा मन मैं सतगुर ध्यान तरा। दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ। काल जाल अर महा जंजाला छुटके जमै डरा।

नाहन गुनो नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब कीजै। नानक हार पर्यो शरणागत अपह दान प्रभ दीजै। जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा। राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो यो संसारा रहाओ। जां को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेखते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबू नाए संभारा। नानक शरण पर्यो जग बंदन राखो बिरद तुहारा। जय श्री महला पंजवा संत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अंधन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरो को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिलपी नाती रीजै। प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रक जवैत संतिया। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया। यार वे प्रे हब्बे सखिया मुंह कही ना जेहिया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चितेहिया। हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा। तना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। जिन्नी मैंडा लाल रिजाया हों तिस आगे मन डेहिया। नानक कहे सुन बिनो सुहागण मुंह दस डिखा फिर केहिया। यार वे प्रे अपन पाणा किस नी सी छंदा। यार वे तै रव्या लालन मुंह दस दसंदा। लालन तै पाया आप गवाया जय तन भाग मथाने। बहा पकड़ ठाकर हों किदी गुण अवगुण ना पिछाने। गुणहार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किछ सुहंदा। जन नानक तन सुहागण साई जे संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई वर लोड़ींदा आया वजी वादाई। महामंगल रहस्थिया पिर दयाल सद नवरंगिया। वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई। बिनवंत नानक सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय श्री महला पंजवा कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। ऊंचा अगमा पार प्रभ कहन न जाया कथ। नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ। शंत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया। केते गणो असंख अवगण मेरिया। असंख्य अवगण खते फेरे नित प्रत सद पूलिया। मोह मगन बिकराल माया तौ प्रसादी कूलिया। लूक करत बेकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया। बिनवंत नानक दया तारो काट पव जल फेरिया। सलोक निरत ना पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ। नानकी बेनंतिया मिलैन थावे थाओ। शंत दूसर नाही ठाओ कां पह जाइय। आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई। त्याए सो प्रभ सदा अपना मनह चिंदिया पाई है। तजमान मोह विकार दूजा एक स्यों लिवलाई है। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाई है। बिनवंत नानक धार कृपा साच नाम समाई है। सलोक अरे मन तां को त्याई है सब जा कै हाथ। राम नाम तां संची है नानक निभ है साथ। शंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए। थान अंतर आप जलथल पूर सोए। जलथल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी। गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण तां के क्या गनी। पज सरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोए। बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए। सलोक
ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਖ ਸਵਾਇਆ ਸ਼ੰਤ। ਆਬ ਮਨ ਛੂਟ ਗਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁੱਝੀ ਤਪਤਿਆ ਗਾਨਿਆ, ਗੈ ਪੁਜਾਲੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਨਿਆ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁਖ ਜਲੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਧਾਣੂ ਸੰਸਾਰ ਗਰਭ ਅਟਿਆ, ਕਰਤੇ ਪਾਪ ਅਨੇਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਟਿਆ। ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਅਭਿਮਾਨ ਬੂਡੇ ਮਰਨ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਤਾ ਇਹ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵੇ। ਪੁਜ ਦਿਵਸ ਆਏ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਦੁਖ ਧਰਮ ਤੂਤੈ ਡਿਠਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਭਰਮੈ ਜੋਨਿਆ ਸੰਖ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵਹੀ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਵੇ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਹਰ ਅੰਤ ਜੂਵੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਹੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਏ ਖਿਨ ਏਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵਹੀ। ਜੋਬਨ ਗਇਆ ਬਤੀਤ ਜਰ ਮਲ ਬੈਠੀਆ, ਕਰ ਕੰਪੈ ਸਿਰ ਡੋਰ।

मन बिला स्वादंग रसै एकदा चनै सिमरंत नानक तेजंत बिष्टा कृम है मुंज मुच अडंबर हब के हो मंज मोहब्बत ने है सो साई जय विसरै नानक सो तन खे है पौड़ी सुंदर से जानेक सुख रस भोगन पूरे गृह सोयन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे मन इच्छे सुख मानदा किश नाहे विसूरे सो प्रभ चेतना आवई विष्टा के कीरे बिन हर नाम ना सांत होए कित बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दैद सै त्यागंत कपट रूप माया नानका नंद रूप साध संग मैं मन साई मुख उचरा वत्ता हबे लो नानक हबा डंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी चुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पत ना आदरो उद्यान पर मिन्ना मित्र ना इठ धन रूप हीन के साग ना सिन्ना राजा सगली सृष्टि का हर नाम मर पिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शमर छत्र चमर तख्त आसन अरे चंत मूड़ अज्ञान अंधै नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हबरंग माणिया मिठा लगड़ा मोहो नानक नावे हूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने सेती चेत मूर्ख लाया बिसरे राज रस भोग जागत पखलाया यार जा गई विहाए तंदै ताया पूर्ण पय नाकाम मोहया माया क्या बेचारा जंत जाया पुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोकै जगते पृथ्वी नव खंडणै बिसरंत हर गोपाल नानक ते प्राणी उद्यान भरमणै कौत कोट तमासया चेतना आव सुनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महाभयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सच कर जानिया काम क्रोध अहंकार फिर देवानिया सिर लगा जमडंड ता पछतानिया बिन पूरे गुरदेव फिर सैतानिया सलोक राज कपटंग रूप कपटंग तन कपटंग कुल गर्भतै संचंत बिखिया शलंग छिद्रंग नानक बिन हर संग न चलते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिसम सोहना अडना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुलई माया पौड़ी चल दया नाल ना चल सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है हर बिसरिया क्यों त्रबतावै ना मन रंजी है प्रभु छोड़ अन लागै नरक समझी है हो कृपाल दयाल नानक पौ पंजी है सलोक नच राज सुख मिष्टं नच भोग रस मिष्टं नच मिष्टं सुख माया मिष्टं साध संग हर नानक दास मिष्टं प्रभ दर्शनं लगड़ा सोने हो मन मजाहू रतिया विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सोतनी पौड़ी हर बिन कशुना ला गई भगतन कौ मीठा यान सुवा सफी किया कर निर्णव डीठा अज्ञान परम दुकटिया गुर भय बसीठा चरण कमल मन बेदया जो रंगम जीठा जियो प्राण तन मन प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यागत जलंग न जीव मीनंग न त्याग चात्रक मेघ मंडल बाण बेदांच कुरंक नादं अलबंधन कुसुम बसन चरण कमलर चंत संत नानक आन ना रुचते मुखडे गाऊ पलक छड़िया न डेऊ चित जीवन संगम ते स्थणी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यो मछली बिन

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सा राधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थीवै बाहरा नानक आसड़ी निवाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणंग सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदोत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त है कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिले गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारे भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लिहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना सो संग पाइय वड्डै पुन आठ पहर हर त्याय हर जस नित सुन सलोक दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पहे दया।

सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण जसी उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत्यो पाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेर संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ तिस जन कौ मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे हर आपे पंच तत् विस्थारा विस्तातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवे हर पवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त कश नजर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा वणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जा का अंत ना पारा वारा रहाओ अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर राख है उदर मजारा सो वैसा हर से वो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाईए हर जप नानक नाम आधारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख न लागे आए रहाओ सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन में बिसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किश कीमत कही ना जाए नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावे तवै छड़ाए राग बैराड़ी महला पंजवा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेस्तो दर गोस कुण कर

दरियाओ तू देहांत तू बिसियार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुश खबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ निकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग सुही महला पहला चौप दे कर पहला पांडा तोए बैस धूप देवो तौ दूधे कौ जावो। दूध करम फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवै रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपट जित सत सरनावन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रहै। कहिंदे कहै कहे कह जावै तुम सर अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौ।

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बंधन बांधया सब जग पवे। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै, जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। रहाओ कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े, तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जिया खावने बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईया अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै, ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला, साध रंग ढोला। रहाओ साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई, जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई, आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया, सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो, सौ खरा प्यारा, हम सह केरियां दासियां, साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडै पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया, चल ऐ सतगुर पाए पवे ना पिखिया। जा को महला हजूर, दूजे नवै किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे सारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए ज्योत स्पाव सी, पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी, ये द्वारे तोए हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी, मत को जाने जाए अगै पाए सी। जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी, अमृत हर का नाव आप वरताए सी। चलिया पत स्यों जन्म सवार, वाजा वाए सी, मानस क्या विचारा त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल सब कुलतार सी। सुही महला पहला, जोगी होवे जोगवे, भोगी होवे खाए, तपिया होवे तप करे, तीर्थ मल मल नाए। तेरा सदड़ा सुनी जय पाई, जे को बह अलाए। रहाओ जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ ना होवई जे सणनी सणे जाए। तैसो जैसा कांडिए, जैसी कार कमाए, जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए।
ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਓ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना, तू जल थल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना रहाओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तो राजी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मनजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावे। राग सूही महला चौथा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सत संगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मिलो सत संगत, हम धोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के। हमरी जात पात गुर सतगुरु, हम वेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो ला जन के। सूही महला चौथा, हर हर नाम भजो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मंतन अर्प धरियो गुरिया गै, सिर वेच लियो मुल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रस माने, बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हथ फलगा। हर राख राख जन किरम तुम्हारे, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको कीजे दान हर निमगा। जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटाऊ सद घुमगा। सूही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग, गुर तुठे हर रंग चाड़िया, फिर बहु न हो वी भंग। मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेसिया, हर पेटिया राव निसंग रहाओ। मुंद आणी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो, मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किल विख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा सुध ना होई, आन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर पेख बहुत चितराई, मनवा दे दिस्तावे, हमें ब्यापिया शब्द ना चीने, फिर जूनी आवे। नानक नजर करे सो बूझे।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान। सूही महला चौथा, कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, जो पावे

ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई जिन किए तिसे न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हों मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हों बलिहारी जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरै वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवें बख्स रहाओ सब जियो पिंड दिया तुदे आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत कर तुद सिरिट सब साजी कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मनमुख करै से रोवै हर की वडियाई हौ आख ना साका हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतै गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश कट फूटे ते ओही प्रगास परम लोभ मोह माया विकार परम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सतनाही ना को आवै ना को जाही गुर पूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवा कीता लोड़ै सो प्रभ होए तुद बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की रख लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारै कछु ना पाइय।

जिसनो लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै, दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए, दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद पावे तायाणै रास, कर कृपा अपनी भगती लाए, जन नानक प्रभसदा ते आए, सुही महला पंजवां, तन सुहागन जो प्रभु पछानै, मानै हुक्म तजै अवमानै, प्रेस राती रलिया मानै, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तजला जलुकानी, रहाओ सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै, सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल न पावै, फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै, बिनो करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवां, गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी, कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे, रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे, जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यो हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे ग्रह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सदजा गंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखां तै

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाईए अंत न लहीए मंत्र से चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभात दे निस्तारे सुही महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महला पावे कहतो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठीसा रहाओ पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे अतीत सदाए माया का माता मने प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवां बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझैना एना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन जीठा कबहु ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवां कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण ले उसको डुबता गुनहगार लून हरामी पाहण नावना पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवां।

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हों जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा, जा कै सिमरन कछ भउ ना ब्यापै।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले।

ओट सवारी सदा सदा जपिए हर नाम पूर्ण होवे मन के काम रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ जीवत मरत निहचर पावे थाओ सो साहो सेव जे टोट न आवे खात खर्चत सुख अंध विहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया गुर प्रसाद नानक नाम ते आया सुही महला पंजवा गुर पूरे जपहे दयाल दुख बिन से पूर्ण पई काल पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न सकै तीने ताप निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे नानक मांगै दान प्यारे सुही महला पंजवां से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चहारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समर्थ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिनसे, गुर पूरे मिल पाप तजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, घर का काज ना जा।

दर्शन कह लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंतु तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवा, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हार, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवा, हर का संत प्राण तानु। तिसका पनिहारा, भाई मीत सुत सगल ते, जीहूं ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण ताल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तज मान सरणी परो, हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड। ताहू मैं पाओ, राख लेहो एहो बिखाई जियो। देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोट वरिया, निज मंदिर प्रिया। तहां आनंद करिया, न मरिया न जरिया। कीर्तन जुरिया बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया दर्शन करिया, नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोगन ही हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध को पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कर सेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बेनंतियां। मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो। ताप गया संसारा, भगता की टेक तू। संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਇਆਲਾ ਸਾਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤ

तू दयाल कृपाल कृपा निद मनसा पूर्ण हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथा हुआ पारे अति उचा, कोई अवर ना तेरी पत, ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। दिन रहन सास सास गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठे पावा। सूही महला पंजवा, विसरे नाही जे तू कबहू, सो थान तेरा केहा। आठ पहर जे तुद ते आई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हाँ सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरै बिललाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेटे गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरिया, जे को बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर ली जै। वेद कतेब सिमरत सब सास्त, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौ वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै, ओए राम नाम रंग राते। तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जीवट ना कोई, भगतां बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता कै निर्णय आवै। जन्म जन्म का विछड़िया होवै, तन हर स्यों आन मिलावै। माया मोह परम पौ काटै, संत सरण जो आवै। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णौ, जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया, से सब ते पए निकाणे।

जी आस चुकाई मेरे राम राए तुद चित आया उबरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जपनाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सीओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहू काची दे आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तू ही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा प्रवान गणी से ही एह आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हम बल जाई केसा का

तेरी बख्श ना मेटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहरे आराधै तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै सादै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना, पुछै कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होणिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर त्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना विसरै, निदारा आधार जियो। सुही महला पहला, काफी कर दसवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब, गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार, वखर सच लै पथ पाए दरबार। सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे। साचे मन पाया, लाल रत्ता मन मानिया, गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुण सार, अंतर तू वसै। तू वसै मन माए, सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए, आखो के तड़ा। गुरमुख हर गुण गाए, रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल, प्रीत में अपना। जे चलै गुण नाल, नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना, ना तिस रंग है। मरसी होए विडाणा, मन तन भंग है। गुर की कार कमाए, लाहा कर आणिया। गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास, जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास। हर गुण गावसी, सूही महला पहला। ज्यों आरन लोहा पाए, पन कढ़ाई है। त्यों साक्त जोनी पाए, पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख, दुख कमावना। हाँ मैं आवै जाए, परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखनहार, हर नाम ते आई है। मिले तुझै रजाए, शब्द कमाई है। तू कर वेखै आप, देह सो पाई है। तू देखै थापो थाप, दर भी नाई है।

काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला, काया का मनसदा सुहेली गुरमुख नाम समाला, काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई, मन मुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई, काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नव निध पाई है गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तोलावै आपे तोलनहारा, एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाइए नाही नाम पाइए गुर बिचारा, गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतराई, काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा, सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा, पूरा सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा, सा काया जो सतगुर सेवै सच्चा आप सवारी, विण नावै दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा धारी, राग सुही महला तीजा कर दसवां एको ओंकार, सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो, रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पायर चन, तिसना भुख न उतरै अंधन जलत फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन, निंदा पली किसै की नाही मनुख मुग्ध करन, मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन, ए मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए, आप बीज आपे ही खामना कहना किशु ना जाए, महापुरखा का बोलना होवै कितै परथाए, ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवड़ भागी जे

आए सतगुर नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से न विछड़े दर सच्चे दे सन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुखी उपजे सच्ची भगत करेन सच वणंजै गुर शब्द स्यों लाह नाम लयेन सोइना रूपा पाप कर कर संचिया चले ना चल दया नाल विणावै नाल न चल सी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हिरदय रखो संभाल एहो खर्चा खुट है गुरमुख निभै नाल ए मन मूलो भुलिया जासै पत गवाए एहो जगत मोहे दूजै व्यापिया गुरमति सच ते आए हर की कीमत ना पवै हर जस लिखण ना जाए गुर कै शब्द मन तन रपै हर सो रहै समाए सो सहो मेरा रंगला रंगे सही सुभाए कामन रंग ता चढ़ै जा पिरकै अंक समाए चिरी विछुन्ने पी मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निद नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन नावे जन्मै ना मरे नावे दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़े जे अंदर मिले रहन इस जग मैं विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है किद बिद मिले आ जाए गुर कै शब्द परम कटिए अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहारण मन हर गुण सुधार वन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याय न रंग स्यों गुरमुख नाम लगन तुर पूर्ब होवै लिखिया गुर पाणा मन लयन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वेखा लिया प्रभ आत ब्रह्म पछान सब ना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए सेवा सा प्रभावसी जो प्रपाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद कोई

मैं तुझ ऊपर बहु मानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा वे खाल एहा पाई मूं दातड़ी नित हिरदै रखां समाल पाव जुलाई पंद तो नैनी दर्स दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुर थी वै कृपाल कित्ती लख करोड़ प्रिये रोम न पुजन तेरिया तू साही हूं साहो हों कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो हब वदानिया हिक पोरी नदर निहाल देह दर्श रंग माणिया जय डिठे मन तीरी है किल विख वंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहा पर पूरे होए निमाणी टह पई मिलिया सह सुभाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय सूही महला पंजवा सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन मरण मोह दुख सब

नरक स्वर्ग अवतार माया तंदया सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारया नाम बिना सुख नाहे सर पर हारया आवे जाय अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते जिनको भय दयाल तिन साधु संग पया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो राग सुही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अमावन डोसड़े हों क्यों सौ रावण जाओ जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाना है मेरा नाओ जियो जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी है जियो से गुण मंजना यावनी हों कह जी दोस्त रेव जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो एक तटोल ना अंबड़ा हों सतगुर बाणा तेरे जाओ जियो सोइना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो हों एनी टोली पुली अस तिसकंत ना बैठी पास जियो अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहोरे क्या मोह देसी अग्गै जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ यास जियो तै सह नालो मुक्ति अस दुखा कू तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगणा एक

तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजै गुर शब्दी सच जानिया साजन होवन अपने क्यों पर कर जाही साजन दाते सच के संगे मन माही मन माहे साजन करै रलिया कर्म धर्म सवाया अड़सठ तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे थाप वेखै तिसै पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेथिया क्यों पादर जाने आप मुसै मत होछिया क्यों राह पछाणे क्यों राहे जावे महल पावे अंध की मत अंधली विण नाम हर के कछ ना सूजै अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजै शब्द गुर का मन वसै कर जोड़ गुर पै कर बिनंती राहो पादर गुर दसै मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया दुखी पर आया जगत सबाया कौन जाने बिद मेरिया आवने जावने खरे डरावने तोड़ना आवे फेरिया ना मिहुने उने चूने ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया गुर महली करे अपने सो परपुर लीना सेवक सेवा ता करे सशब्द पतीना शब्दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला बाजंत अनहद बीना गुर महली करे अपने सो परपुर लीना कीता कैसा लाही है कर वेखै सोई ताकि कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावै आप जनावै आपा भुल ना भुलै जय जयकार करै तुद पावै गुर कै शब्दया मुलै हीणो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई। राग सूही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहिलड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम ते आवो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरे अपने विटो जिन कार्ज सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो नानक कहे सुनो जन पाई सुख सोहिलड़ा हर त्यावो सुन हर गुण पीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन मरण पाओ भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिन कौ कृपा कीनी मेरे स्वामी तेने अंदन हर गुण गाए सुन मन पीने सह सुभाए जुग मैं राम नाम निस्तारा गुरते उपजै शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस कृपा करे सो पाए सहजे गुण गावे दिन राती किलविख सब गवाए सब को तेरा तू सबना का हौ तेरा तू हमारा जुग मैं राम नाम निस्तारा साजने आए उठे कर माही हर गुण गावे तृप्त्या गाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर पूखना लागे आए दह दिस पूज होवे हर जन की जो हर हर नाम ते आए नानक हरे आपे जोड़ विछोड़े हर बिन को दूजा नाही साजने आए उठे कर माही एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सुही महला तीजा कर तीजा भक्त जना की हर जियो राख जुग जुग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख होवै हौ मैं शब्द जलाया राम हौ मैं शब्द जलाया मेरे हर पाया जिस दी साची बाणी सची भगत करै दिन राती गुरमुख आख वखाणी भगतां की चाल सची अत निर्मल नाम सच्चा मन पाया नानक भगत सोहै दर सच जिन्नी सचो सच कमाया
हर भगता की जात पात है, भगत हर कै नाम समाणे राम। हर भगत करै विचों आप गवावै, जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणे हर नाम वखाणै, पै भगत मीठी लागी। अंदन भगत करै दिन राती, कर ही मैं बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल, हर जियो वेखै सदा नाले। नानक से भगत हर कै दरसाचे, अंदन नाम समाले। मन मुख भगत करै बिन सतगुर, बिन सतगुर भगत न होई राम। हउ मैं माया रोग व्यापे, मर जन्मै दुख होई राम। मर जन्मै दुख होई दूजै पाए, पर जवे गोई बिन गुर तत् न जानिया। भगत विहूणा सब जग भरमिया, अंत गया पछतानिया। कोट मदे कने पछाणिया, हर नामा सच सोई। नानक नाम मिले वड्याई, दूजे पाए पत खोई। भगतां कै कर कारज साचा, हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे। नाम निधान सच पाया, सदा अखुट कदे नान खुट। हर दिया सह सुबाया, हर जन ऊचे सद ही ऊचे। गुर कै शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जो जुग सोभा पाया, सूही महला तीजा। शब्द सच्चा सच सोहेला, जिथे सच्चा का होए विचारो राम। हउ मैं सब किलवे काटे, सच रखिया और तारे राम। सच रखिया और तारे, दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच विखालिया सोई। साचे गुण गावै सच समावै, सच वेखै सब सोई। नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचा सतगुर साच बुझाया, पत राखै सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चा नाम सुखोई राम। साचै नाम सुख होई, मरै ना कोई, गर्भ ना जूनी वासा। ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाए परगासा। जिनी सच जाता से सच्चे होए, अंदन साहित्य आए न। नानक सच नाम जिन हृदय वसिया, ना विछड़ दुख पाए न। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावै, तितकर सोला होई राम। निर्मल गुण साचे तन मन साचा, विच साचा पुरख प्रभ सोई राम। सब सच वरतै सचो बोलै, जो सच करै सो होई। जह देखा तै सच पसरिया, अवर न दूजा कोई। सचे उपजै सच समावै, मर जन मैं दूजा होई। नानक सब किछ आपे करता, आप करावै सोई। सच्चे भगत सोहै दरबारे, सचो सच वखाणे राम। कट अंतरे साची बाणी, सचो आप पछाणे राम। आप पछाणै ता सच जाणै, सचे सोजी होई। सच्चा सब

या सूही संत महला चौथा मारे सो वे जन हो मैं बिखिया जिन हर प्रभ मिलना दितिया देह कंचन वे वनिया इन हो मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब काल खा इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे गुर शब्दी हो मैं छुटिया वस आण्यो वे जन इस मन कहो मन बासे ज्यो नित पौंदया दुख रहन वे वेहानिया नित आसा आस करेंदया गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौंदया जन नानक प्रभ देहो मत्ती छड आसा नित सुख सौंदया सातन आसा चित करे राम राजया हर प्रभ से जिड़िया आई मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजया कर कृपा लेहो मिलाई मेरा मन तन लोचा गुरमुखे राम राजया हर सरदा सेज विशाई जन नानक हर प्रभ पानिया राम राजया मिलया सहज सुभाई एक तसे जय हर प्रभो राम राजया गुरदसे हर मेले मैं मन तन प्रेम विराग है राम राजया गुर मेले कृपा करेई हाउ गुर विटो कोल कुमाया राम राजया जियो सतगुर आग्या देई गुर तुठा जियो राम राजया जन नानक हर मेले। राग सूही संत महला पंजवा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद सुन बावरे तू काए देख भुलाना सुन बावरे नेहो कूड़ा लायो कसो बरंगाना कूड़ी देख भुलो अडल है ना मुलो गोविंद ना मजीठा थी वह लाला अत गुलाला सब चीन गुर मीठा मिथ्या मोहे मगन थी रहया झूठ संग लपटाना नानक दीन शरण कृपा निध राख लाज भगताना सुन बावरे सेव ठाकर नाथ पुराणा सुन बावरे जो आया तिस जाना निहचल हब वैसी सुन परदेसी संत संग मिल रही है हर पाईए भागी सुन बैरागी चरण प्रभु गह रही है एहो मन दी जय संकना की जय गुरमुख तज बहुमाना नानक दीन भगत पवतारण तेरे क्या गुणयाख वखाणा सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो सुन बावरे हब वैसी गर्व गुमानो निहचल हब जाना मिथिया माना संत प्रभु होए दासा जीवत मरिया भौजल तरिया जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजै अमृत पीजै जिसला वैसे ध्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हों बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाना सत कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसके बलराम जियो बाबल मेरा वड़ समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे ले मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जन

भला संयोग मूर्त पल साचा अब चल निवर खाई जन नानक प्रभय दयाला सर्व कला बने आई। आनंदा वजह नितवाजे पार ब्रह्म मन वूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिरसे परम पै झूठा राम। अनहद बाणी गुरमुख वखाणी जस सुन सुन मंतन हरिया सर्व सुखा तिसी बन आए जो प्रभ अपना करया।

जिस तू मिले सो तुद मिले, सोई सचियारा। श्लोक महला तीजा। सूह विये सूहा सब संसार है, जिंदुरमत दूजा पाओ। खिन मैं झूठ सब बिनस जाए, जो टिके ना बिरख की शाओ। गुरमुख लालो लाल है, जो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सख्त सवै करे आई, मन वस्या हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुरे अपने।

दुख सुख करके कुटुंब जीवाया, मरती बार एक सर दुख पाया। कंठ गहन तब करन पुकारा, कहे कबीर आगे पेना सुमारा। सुही कबीर जी थर हर कंपै बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। रहन गई मत दिन पी जाए, पवर गए बग बैठे आए रहाओ। काचै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुवार कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया मन बाज पतारा। काग उटावत पुजा पिरानी, कह कबीरे कथा सिरानी। सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तैं खटिया कहां गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फुरमान दरगह का आया रहाओ। करो अरदास गाव किश बाकी, लेओ नबेरे आज की राती। किश भी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवास सराय गुजाराओ। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत यूत जन सदा सुहेले, जन पदार्थ जीत्या मोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल तन जोरिया भया पराया। कहो कबीर ते नर पूले, खसम बिसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललत थाके नैन, सरवण सुन थाके थाकी सुंदर काया। जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया। बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया, बिरथा जन्म गवाया रहाओ। तब लग प्राणी तसै सरेवो, जब लग कट मैं सासा। जे कट जाए ता पाओ ना जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावै अंतर, चूकै तसै प्यासा। हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मन जन टाले पासा। जो जन जान भजै अवगत कहो, तिनका कछु ना नासा। कहो कबीर तेजन कबो ना हारै, टाल जो जानै पासा। सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगै हाला। जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी। ऊपर पुजा कर मैं गुर पै पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी रहाओ। नौ डाडी दस मुंसफ धावै, रैयत बसन ना देही। डोरी पूरी मापै नाही, बहु बिस्टा ला लेही। बहत्तर घर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई। धर्म राय का

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुखरलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपख है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो राओ, बावल होई सो सहलो राओ, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

आई। जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुई ते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। जो तुद पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरह बेगाना पौका स्तंताई। भगतहीण नानक जे होएगा, ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म ना आवां।

अगमा गोचर लाख्या पारा चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी, सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे, तुझ बिने अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब सरण तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण, ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचक तुम लाखा पेओ, रहाओ माया मोह तरकटी नार पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोए बाप दिसै वे जात ना होए, एके कहो नाही पौ कोए करता करे करा वैसोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाक रहे मन साचै धारिया, अवरना सूजै गुर कौ वारिया नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सहि ध्याने, हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै खिन सतगुर बूझ बुझाई, रहाओ मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली, सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रया जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ बनासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिखिया संसार सतगुर बोहित।

माया सर्प भयंगा, हमें पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावे, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावे। हाँ फिरो उदासी मैं करत दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिसे आया साध, जो गुंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्ष माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए। दुर्त गया हर नाम ते आए रहाओ, सबनी थाई रव्या आप। आद जुगाद जाकावड़ प्रताप, गुर प्रसाद ना हुए संताप। गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे। सब सुख पाए सदगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ रखवाले। जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रतपाले। बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे। अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी सरनाई। कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए। मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ, प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़। हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे। जाके संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मंतन आधार। बिसरत नाम हो तनशार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज। हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत। बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत। नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे। राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे। सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे। जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी। सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की। जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम वखाणे। हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे। पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी। तेरे जन देखण पावा, वडभागी से काढ़िए प्यारे। संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल। मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे। चूके जम की काणे, तना प्राप दर्शन नानक। जो प्रभ अपने पाणे, ऊंच या पार।

कनेरे, पशु प्रेत मुगत कवतारे, पहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवा, बिखै बन फीका त्यागरी सखिए, नाम महारस पियो बिन रस चाखे, बुड गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महात्मा शक्ति काई सादा दासी थियो, नानक से दर सो बावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए, मृग तृष्णा द्रुम छाया, चंचल संगना चालती सखिए, अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते, इन संग सुख नाम पाया। तन तन हर सा जन सखिए, नानक जिन्नी नाम ते आया। जाय बसो वट पागणी सखिए, संता संग समाई है, तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै, चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना, निश्चर सरणी पाई है, प्रेम बिछो ना मोह व्यापै, नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे, रतड़े सह सुभाए, से सुहावी संग मिल प्रीतम, अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच पुजाए, नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया, कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवा, कर चौथा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, एक रूप सगलो पासारा, आपे बणज आप ब्योहारा, ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए। जत जत जाइए तत दृष्टाए, रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा, आपे जल पा आप ही तिरंगा, आप ही मंदिर आपै सेवा, आप ही पुजारी आप ही देवा, आपै जोग आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आपो पावन आप सुधरना, आप करावन दोष ना लेना, आपन बचनो आप ही।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुरे आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु धूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन ता निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए परसीना। बिलावल महला।

होवत वटभागी, सा संग्राम लिव लागी। मत पत तान सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसराओ परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पंत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना। दया तारे अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया। कर किरपा प्रभ घर मैं आया, रहाओ भगत वछल पै कट नहारे। संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया। पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, सासंग प्रगटे नारायण। नानक दास हो सब दुख पलायण, बिलावल महला पंजवा। कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा। गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे। तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ, एक सबे नाही को दूजा। तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कछु न होवत पाई। जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया। गुण निदान प्रभ तिन ही पाया, बिलावल महला पंजवा। मात गरमै हाथ दे राखिया, हर छोड़ बिख्या फल चाखिया। भज गो बिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारै मूड़े। तब तन बिन सजाए बेहाल, रहाओ तन मन तने अपना कर थापिया। करण हर एक निमख ना जापिया, महा मोह अंध कू परिया। पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया, वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया। संत संग नानक प्रभ पाया, बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत बंधु भाई, नानक होवा पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपुरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहे ना गणे, रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे। भय मनोरथ सो प्रभ जापे, अर्थ धर्म काम मोह का दाता। पूरी पई सिमर सिमर विधाता, सा संग नानक रंग माणिया। कर आया पूरे गुरियाणिया, बिलावल महला पंजवा।

निंदा कर कर पचै कनेरे, मृतक फास गलै सिर पैरे। कहो नानक जपै जन नाम, ताके निकट ना आवै जाम। राग बिलावल महला पंजवां, कर चौथा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संयोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने। चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, कवन सुमत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर ना काहूं बेरे। बिलावल महला पंजवां, चरण कमल प्रभ हृदय त्याए। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभानी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवां, सांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप बिनासे, हर सिमरत किलविक सब नासे। अनद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवां, ममता मोह त्रोह मदमाता, बंधन बांध्यात बिकराल। दिन दिन शिजित बिकार करत औद, फाही फाथा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा बिखम सागरत भारी। उधरो साधु संगर वाला रहाओ। प्रभ सुखदाते समर्थ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। प्रम के बंधन काटो परमेसर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा, सगला नंद किया परमेसर। अपना बिरद समारिया, साजना होए कृपाला, बिकसे सब परवारिया। कार्य सतगुरे आप सवारिया, वड्डी आरजा हर गोबिंद की। सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाओ। वन त्रिण त्रिपवन हरिया, होए सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच पुजारिया। बिलावल महला पंजवां, जिस उपर होवत दयाल, हर सिमरत काटै सो काल रहाओ। साध संग भजियै गोपाल, गुण गावत टूटै जमजाल। आपे सतगुरे आपे प्रतपाल, नानक जाचै साधरवाल। बिलावल महला पंजवां, मन मैं सिंचो हर हर नाम, अंदर कीर्तन हर गुण गाम। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो नेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बिलावल

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार मैं, मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम बारंगला, काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया, श्रम कर ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता, अंदरे त्रिपवन सूजिया, गुरपेट पुनीता, महिमा साधु संग की, सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगहरे, निर्मल पै चीता, रहाओ ऐसी भगत गोविंद की, कीट हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो, तेसा पैदान दीता, सिंह बिलाई होए गयो, त्रिन मेर दखीता, श्रम करते दम आड़को, ते गनीत नीता, कवन वडाई कह सको, बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहे नाम देहो, नानक दर सरीता। बिलावल महला पंजवा, आह बुद्ध पर बाद नीत, लोभ रसना साध, लपटो कपटो ग्रह बेदया, मिथ्या बिख्याद, ऐसी पेखी नेत्र मैं, पूरे गुर प्रसाद, राज मिलख तन जो बना, ना मैं बिन बाद, रहाओ रूप तूप सो गंधता, कापर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन, होए दुर्गाद, फिरत फिरत मानुख पया, खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चुकिया, बहु जोन परमाद, प्रभ कृपा ते गुरमिले, हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद, ताकै पूर्ण नाद। बिलावल महला पंजवा, चरण पहे संत बोए था, तरे सागर जेत, मार्ग पायो ध्यान मैं, गुरदसे पेत, हर हर हर हर हर हरे, हर हर हर हेत, उठत बैठत सोबते, हर हर हर चेत, रहाओ पंच चोर आगै पगे, जब साध संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ, गृह शोभा सेत, निहचल आसन मिटी चिंत, नाही डोलेत, परम भुलावा मिट गया, प्रभ पेखत नेत, गुण गंभीर गुण नायका, गुण कहिए केत, नानक पाया साध संग, हर हर अमृत। बिलावल महला पंजवा, बिन साधु जो जीवना, ते तो बिरथारी, मिलत संग सब प्रम मिटे, गत पई हमारी, जा दिन पेटे साध मोहे, उवा दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा, फिर फिराहों वारी, रहाओ एत छिडाई मोहे ते, इतनी दृढ़तारी, सगल रेन एहो मन पया, बिनसी अपतारी, निंद चिंद पर दुखना, एखन मैं जारी, दया माया अर निकट पेख, नाही दूरारी, तन मन शीतल पय अब, मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तानो, नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा, टहल करो तेरे दास की, पग चारा बाल, मस्तक अपना पेट देओ, गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल, निस्बासर मन अंध हो, तो चिरवत कृपाल, रहाओ जगते उदारन साध प्रभ, तिन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभ, संतन पगराल, उक्त सियान पो कश नहीं, नाही कश काल, ब्रह्म पै राखो मोहते, काटो जमजाल,
बिनौ करो करणा पते, पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल। बिलावल महला पंजवा, कीता लोड़ै सो करै, तुझ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा देह कै। जम दूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटी है, बिनसै अहमेव सर्व कला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रमन सापूर। जित जित लावो तित तित लगे, सियानप सब जाली जत का तुम भरपूर हो। मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना, वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना, प्रभ सेती रंग रातिया ता ते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हार राखिया पय परम पसना, नाम निधान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल, राज मिलख सिकदारिया अग्नि मैं जाल। संत जना का शोहरा तिस चरणी लाग, माया तारी शत्रपात तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्वन दान, गृह साक्त शक्ति प्रकार ते बिहू समान। भगत जना का लुगरा ओढ़ नगन ना होई, साख सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साक्त स्यो मुख जोरे अदवी चो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उते छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बणत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, श्रवणी सुनो हर हर हरे ठाकर जस गावो। संत चरण कर सीस तार हर नाम ते आवो, कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो। संत जना की रेणका लै माथे लावो रहाओ, नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलावो। पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो, सास सास न विसरे अनकत ना तावो। सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो, सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो। सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा साह संग तिस पेटे हरदाया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर घर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया। अंतरजामी आप प्रभु सब करे कराया, पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रपहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जन साजिया कर दुर्लभ देह,
अनक छिद्र मन में टके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरै प्रभु मनै ते जिसके गुण ए है प्रभ तज रचे जे आन स्यों सोर लिया खे है रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे है छोड़ परपंच प्रभ स्यों रचो तज कूड़े ने है जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी ए है कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले है ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने हे दास दास को दासरा नान कर ले हे बिलावल महला पंजवा एक टे गोविंद की त्यागी अन्यास सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास जन का नामाधार है प्रभ सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपार दीन दयाल कृपा निधे सास समार करण हार जो कर रहे साई वड्याई गुरपुरै उपदेसिया सुख स्मर जाई चिंत अंदेसा गणत तज जन हुकम पछाता नह बिनसै नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तपते पई सांत परसत पाप नाठे अंध कूप में गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेड़त होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अव्याए बहत संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिन से तिह लोक के पाए सुखथान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हरग म्यापार बिलावन महला पंजवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ बिसराना करने हर ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चित आए संतन कै आनंद हो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खन में थापै कीमत कहीं ना जाइए ठाकर प्रतापै पेख तलीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी सरनाई हर दिन सरैण नानक जपै साध साध बल जाई बिलावल महला पंजवा जल ढोवो एह सीस कर पग पख लावो बार जाओ लख बेरिया दर्स पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ ते पावो देव सुहनी साध कै बीजन टोलावो रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावो ओवा रस में सांत तृप्त होए बिखै जलन बुझावो जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावो नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तरै जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वड पागी पाए सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पय सहाई जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलक प्रभ मोह की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल गुरपूरै कृपा करी काटिया दुख रोग मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ
औखद हर का नाम है, जित रोग ना व्यापै, साध संग मन तन हितै, फिर दुख ना जापै। हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई, किलवख उतरै सुध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, पै ते उपजै भगत प्रभ, अंतर होए सांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

सिमरत सिमरत सिमरिय सो पुरख दातार मनते कवो न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव जा कहो कृपा करहो प्रभु ता कहो लाभो सेव निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो ना विसरै परमानंद। बिलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया गुर कीने धर्मा गुर पूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन तन तन मन सब शीतल पया पाया सुखबीर रहाओ सोवत हर जप जागया पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्ता सिया ताँ का अचरज स्वाद आप मुक्त संगीतरे कोल कुटां ब्योधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ तान दीबान परवार तन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए कथा पुरातन इओ सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा बंधन काटै सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखै गोपाल राओ आसा परम विकार मोह इन मैं लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखै त्यो रहा प्रभ अगम अपारे करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटै जो ऊपर लादा रहाओ जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत्या आनंद भया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोबिंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हौ जीवा पार ब्रह्म आराध ते मुख अमृत पीवा रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत घना सुख सहज विश्राम मनते कदे न विसरै अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जा कह सब किश हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया
ਹੁਣ ਸੁਖ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਸੀਤਲ ਹੋਤਾਇਆ। ਜੀਵਤ ਆ ਅਥਵਾ ਮੋਇਆ, ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਰਚਨ ਰਚਾਇਆ, ਕਉ ਤੇ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ ਰਹਾਓ। ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਸਨ ਸੀਤ ਕਰਤਾ ਕਰੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਕਾਢੈ, ਕੀਰੀ ਤੇ ਅਸਤੀ ਕਰੈ, ਟੂਟਾ ਲੇ ਗੰਢੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਇਹ ਕਿਰਤ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਵਨ ਸਰਵ ਫਲ, ਰਵੀਐ ਹਰ ਨਿਰਤ। ਹਮ ਤੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਨਾ, ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸਾਦ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਕੂਪ ਅੰਧ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਾਢ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈਂ ਫੇਰਾ, ਖੋਜੋ ਬਨਥਾਨ, ਅਸ਼ਾਲਿਆ ਸ਼ੇ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਭ ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਪਲਾ, ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਰਹਾਓ। ਵਰਨ ਆਸਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਨੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਪੰਚ ਤਤ, ਠਾਕਰ ਅਬਨਾਸ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀ ਸਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾ ਕੋ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਈਸਰ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨਸੇ ਤਹਿ ਪਰਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਪੇਟਿਆ, ਜਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਰ ਜੋ ਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਹਰਿ ਆਪ। ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਨਿਬਹਤ ਰਹੇ, ਗੁਰਸਬਦ ਅਖੂਟ, ਪੂਰਨ ਪਈ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਬਹੂ ਨਹੀਂ ਟੂਟ ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਰਾਧਨਾ, ਹਰ ਨਿਧਿਆ ਪਾਰ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਹਰ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਦੇਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰ। ਭਗਤ ਆਰਾਧੈ ਏਕ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਾਰਜ ਪਏ ਰਾਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ ਰਹਾਓ।

कथा कीर्तन राग नाद तोन एहो बन्यो सुभाओ, नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाहिं फल पाओ। बिलावल महला पंजवा, दास तेरे की बेनती, रिद कर परगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखर को नास। चरण कमल का आसरा, प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो, जब लग घट सास रहाओ। मात पिता बंदप तू है, तू सर्व निवास, नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा, सर्व सिद्ध हर गाइय, सब भला मनावै, साध साध मुखते कह, सुन दास मिलावै। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जी सगल दयाल पै हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा, अरदास सुनी दा तार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपना।

हाथ रहाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। साज जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पहियास, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जान तुम्हें अंतर जामी, थान थन अंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोखा मारे बक्सियां।

परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत, चरण कमल नानक शरण आई, राम नाम जप निर्मल मंत। बिलावल

गोबिंद पूर्ण आस एक निमख रहन ना जाए वड़ भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर जो मीन जल सो हेत अल कमल पहना पेत ज्यों चकवी सूरज आस नानक चरण प्यास ज्यों तरन भरत प्राण ज्यों लोभिय धन दान ज्यों दूध जलै संजोग ज्यों महा खुदियारथ भोग ज्यों मात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यों दीप पतन पतंग ज्यों चोर हिरत निसंग महंग लैका मैं बंद ज्यों ग्रस्त बिखई तंद ज्यों जुआर बिसन ना जाए हर नानके हो मन लाए कुरंक ना दैने हो चात्रक चाहत में हो जन जीवना सतसंग गोविंद भजना रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्व फल हर ले कुल समूह कर तो दार संसार उत्तर सपार हर चरण बोस्तता है मिल साध संग जसगा है हर पैज रखे मुरार हर नान

एक में एक अंकार निराला, अमरा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जम दर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जम काल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजण हारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, चौथे उपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाए, सो बुझे जिस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म भूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगरा ते एक मरतूर, एक दर कर सच है देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सुचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया। आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे। तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो। होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी। मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे। होए टीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे। गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी। नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी। मोह नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो। नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

सर्व सुखानिद पियो, सुख सागर प्रपेटे है, नानक सुखी होत एहो जियो। संत सुख सागर प्रपाई है, जब होवे भागो राम, मानन मान वजाई है, हर चरनी लागो राम। छोड़ सियान पचातरी दुरमत बुद्ध त्यागो राम, नानक पौ सरनाई राम राय, थिर होए सुहागो राम। सो प्रभ तज कत लागी है, जिस बिन मर जाइए राम, लाज ना आवे अज्ञान मती, दुर्जन बिरमाइए राम। पतत पावन प्रभ त्याग करे, कहो कत ठहराइए राम, नानक भगत पाओ कर दयाल की, जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरै बल गईये, दो चारण रसना राम, प्रभ भक्त वछलने सेवही, काया काक ग्रसना राम। ब्रह्मो ही दुख न जानही, कोड जोनी बसना राम, नानक बिन हर अवर जे चाहना, बिष्टाक्रम पसमा राम। लाए बिरो भगवंत संगे, होय मिल बैरागन राम, चंदन चीर सुगंध रसा, हमें बिख्यागन राम। ईत उतने डोली है, हर सेवा जगन राम, नानक जन प्रपाया अपना, सा अटल सुहागन राम। बिलावल महला पंजवा, हर खोजो वड भागियो, मिल साधु संगे राम, गुण गोविंद सद गाई है, पार ब्रह्म कै रंगे राम। सो प्रभ सद ही सेवी है, पाई है फल मंगे राम, नानक प्रभ सरनागति, जप अंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरै, जिन सब किश दीना राम, वड भागी मेलावड़ा, गुरमुख पिरचीना राम। बाहां पकड़ो तम ते काढ़िया, कर अपना लीना राम, नाम जपत नानक जीवै, शीतल मन सीना राम। क्या गुण तेरे कह सको, प्रभ अंतर जामी राम, सिमर सिमर नारायण पै पार ग्रामी राम, गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम, नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम। रस पिन अड़े अपने राम संगे, से लोइन नीके राम, प्रपेक्त इच्छा पुनिया, मिल साजन जी के राम। अमृत रस हर पाया, बिखिया रस पीके राम, नानक जल जलै समाया, ज्योति ज्योत मीके राम। बिलावल की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, हर उत्तम हर प्रभ गाविया, करनाद बिलावल राग, उपदेश गुरु सुन मन्या, तुरमस्तक पूरा पाग। सब दिन सरैन गुण उचरै, हर हर हर उर लिव लाग, सब तन मन हरिया होया, मन खिड़िया हरिया बाग। अज्ञान अंधेरा मिट गया, गुर चानन ज्ञान चराग, जन नानक जीवै देख हार, एक निमख कड़ी मुख लाग। महला तीजा, बिलावल तब ही कीजिए, जब मुख होवै नाम, राग नाद शब्द सोहने, जान लागे सहि त्यान। राग नाद छोड़ हर सेवियै, तां दरगै पाइए मान, नानक गुरमुख ब्रह्म विचारी है, चूकै मन अभमान। पौड़ी, तू हर प्रभ आप या गम है, सब तो दे पाया, तू आपे या वरदा, सब जग सवाया, तुझे आपे ताड़ी लाई है, आपे गुण गाया, हर त्यावो भगतो दिन सरात, अंतले छड़ाया, जिन सेव्या तिन सुख पाया, हर नाम समाया। श्लोक महला तीजा, दूजे पाए बिलावल ना हो वई, मन मुख थाए ना पाए, पाखंड भगत ना हो वई, पार ब्रह्म ना पाया जाए। मन अठ कर्म कमावणे, थाए ना कोई पाए, नानक गुरमुखिया बिचारी है, विचों आप गवाए, आपे आप पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म वस्या मन आए। जमन मरना कटिया, ज्योति ज्योत मिलाए। महला तीजा,
बिलावल करो तुम प्यारे हो, एक सिउं लिव लाए, जन्म मरण दो कटिए सच्चे रहे समाए। सदा बिलावल आनंद है जे चले सतगुर पाए, सतसंगति बह पाओ करो सदा हर के गुण गाए। नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए, पौड़ी सबना जिया विच हरे आप, सो भगतां का मित हर, सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद कर। हर भगतां का मेली सरबत सो, निसल जन टंग तार, हर सब ना का है खसम, सो भक्त जन चित कर। तुद अपड़ कोय ना सकै, सब चख चख पवै चाड़। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मणा जे चलै सतगुर पाए, जिन कै हृदय हर वसै हम मै रोग गवाए। गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा, से नाम रहे लिवलाए। महला तीजा। सतगुर की सेवना कीतिया, शब्द ना लगो पाओ, हम मैं रोक मावना अधीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमावंदे फिर जोनी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्लै पाए, पौड़ी सब वड्याइया हर नाम विच, हर गुरमुख त्याई है। जे वस्त मंगी है साई पाई है, जे नाम चित लाई है। गोहज गल जी की चै सतगुरु पास, ता सर्व सुख पाई है। गुर पूरा हर उपदेश दे, सब भुख लै जाई है। जिस पूर्व होवै लिखिया, सो हर गुण गाई है। सलोक महला तीजा। सतगुर ते खाली को नहीं, मेरा प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है, जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है, सब तृष्णा भुख गवाए। हर रस पी संतोख होवा, सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया, अनहद शब्द बजाए। सचो दैद पसरिया, गुर कै सह सुवाए। नानक जिन अंदर सच है, से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है, जा को नदर करे, मानस ते देवते पए। सच्ची भगत जिस दे, हाँ मैं मार मिलायन, गुर कै शब्द सोचे। नानक सह जे मिल रहे, नाम वड्याई दे, पौड़ी गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई। हर करतै आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन, ओना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन, ओना प्राया भला ना सुखाई। क्या होवै किसी दी, क्या होवै किसी की चख मारी, जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावै, सा नित नित चढ़ै सवाई, सब चख चख मरै लोकाई। सलोक महला तीजा। त्रिग एह आसा दूजे भाव की, जो मोहे माया चित लाए। हर सुख पल्लर त्यागिया, नाम विसार दुख पाए। मन मुख अज्ञानी अंधले, जन्म मरै फिर आवै जाए। कार्य सिद्ध न होवनी, अंत गया पछताए। जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिलै, सो हर हर नाम ते आए। नाम रते जन सदा सुख पाए, न जन नानक तन बल जाए। महला तीजा। आसा मनसा जग मोहनी, जिन मोया संसार, सब को जम के चीरे विच है। जेता सब आकार, हुक्मी ही जम लगदा, सोबरै जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसादी हो मंतांतर, जा छोड़ै हंकार। आसा मनसा मारे निराश होए, गुर शब्दी विचार। पौड़ी जिथे जाइए जगत मैं, तिथे हर साई, अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई। कूड़ यारा के मोह फिटकी, सच भगत वड्याई। सच साहेब सच्चा न्याओ है, सिर निंदक शाई।

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिवलागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुनी उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया तेज ते समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जहां कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ताक, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै कुटल गांठ।

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर जिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रह समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय। साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसै माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनकै किश हाथ नहीं कहां करै एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारै तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितै कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा

जो तुद उपकरे दुख सुखासा तिसका प्रवासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप, तने अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरतो सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखे सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान, सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिन के चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावाओ, ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। ते जन की वडियाई हरिया वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुड़ना। जन नानक हर दानिक दीजै, नित बसे हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पात साह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी। तिस जेवड़े अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसे मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंब कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे। जित हर दरगह पावे तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावे सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, दृष्टो करता अदृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्याप्त करता लिप्तो करता, भक्तो करता बूझत करता, यावत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भायले, भगतारे सास ले खैले तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़िया वायले, अपने रहन को ठौर ना पावे, काए पर कह जायले रहाओ। ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुंबायले, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर विशरे, थिर संगत हर हर त्यायले, जैसे मीन रसन सा

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड

ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कहे तो जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राख राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है, साध संग जप निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल, है पी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला, ना हो बिनसे ना हो जाए, आज जुगादी रहा सुमाए, ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एह करने जोग, ना इस बाप नहीं है समाया, एह परंपर होता आया, पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सद ही जागे, तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया, अशाला शेद अपे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरणवण पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना लागे, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए, सफल जन्म ता का प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर। राग गौ

अरे अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा परखोत्म, कट बिनसै गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो एहो जियो आए, कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर्म है किन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर्ब निरंतर सोए रे। कह कबीर रा राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की, कर दूजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूल में मारियो। हस्त पाक कै चीसा।

हरे महावत तुझ जारो काट, इसे तुरा वो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह त्यान, वा कर दे बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत न को उपाई रहाओ। ना यो गृही ना यो दासी, ना यो राजना पीख मंगासी। ना इस पिंड ना

इस मरते कहो जे को रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुरप्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सर चढ़ बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई, आवत जात ना।

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं। गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डारत हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण।

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेकै नैकट काव मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेटता लख लखाया जैसे बिखै हेत परनारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब भरमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर कर तो नहीं दुख जमाए रहाओ हर हर नक्श हरे।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखिया था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता जीवत।

जप मुकंद मस्तक निशान, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीट दास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो 68 तीर्थ नावै, जे हो द्वादश शिला पूजावै, जे हो कूप तटा देवावै, करै निंद सब बिरथा जावै। साध का निंदक

करने दो कमने नहीं गुना, जे हो अनक प्रसाद करावे भूमदान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना संड करे निंद बोजो नी हंड, निंदा कहा करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा, निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़। राम कली।

कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना कोई नाम जपे जप माली लागे तसे त्याना अब ही कभी किशु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कवन गते हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबरया भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कहिया। दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्यान मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह आस

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रह निराशा तव नानक एक मिले। इन बिद सागर तरिय जीवत आयो मरिय रहाओ दूजा, राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने। पत झोली मंगण कै ताई पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे, गोरख सोजन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह, ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन माशंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवै सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चित लावै। नानक बोले अमृत बाणी सुन माशिंदरा औदू निशानी, आसा महे निराश वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए, दिखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तार नहारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया, परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइए एत, तन कर तुलहा लंगे जेत। अंतर पाहे तुसै तू रख अहनस दीवा बलै अथक,

राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलत आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान बिचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ, दिन में रहन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

एकै एकै तू राया, तौ कृपा ते सुख पाया रहाओ। तू सागर हम हंस तुम आरे, तुम मैं माणक लाला, तुम देवो तिल संक ना मानो, हम पुंचे सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देवो खीरा, हम खेल सब लाड लडावै, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग आ गाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन ना जाए। राम कली महला पंजवा, कर कर ताल पखावज नैनो, माथे वजैर बाबा, करनो मद बासरी बाजै, जेवा तुनिया गाजा। निरत करे कर मनुआ नाचै, आने कुगर साजा, राम को निरतकारी, पेखै पेखन हार दयाला, जेता साज सिंगारी रहाओ। आखार मंडली तरन सबाई, ऊपर गगन चंदोवा, पवन विचोला करते अकेला, जलते उपत होवा। पंच तत् कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा होवा, चंद सूरज दुए जरे चरागा, चहो कुंट पीतर राखे। दस पातो पंच संगीता, एकै पीतर साथे, भिन्न भिन्न होए भाव दिखावै, सबो निरारी पाखे। घर घर निरत होवै दिन राती, कटकट वाजै तूरा, एक नचावै एक पवावै, एक आए जाए होए तूरा। कहो नानक सो बहुर ना नाचै, जिस गुर भेटै पूरा। राम कली महला पंजवा, ओंकार एक तुन एकै, एकै रागा लापै, एका देसी एक दिखावै, एको रया व्यापै। एक

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद यो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरने जोग, नै बिन सैब नासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखे हो बीचार। राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारे ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवारो रे रहाओ। प्रथमे वसिया सतका खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। दुतिया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक है सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक है मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउं जपया नाथ दिन रहनाई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवां करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊं लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

राज रंग रूप सब कूर नाम बिना होए जासी तूर परम भूले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं देह बरदानी सागत इवही करत बयानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाए नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पंच शब्द तह पूर्ण नाद अनहद बाजे अचरज बिस्माद तेल करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निरजोग सुख सहज आनंद पवन साध संग बैस गुण गावै तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ ऊहा सिमरै केवल नाम बिरले पावै ओ विश्राम भोजन पाओ कीर्तन आधार निश्चल आसन बेसुमार दिग ना डोलै कतहू ना तावै गुर प्रसाद को।

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहण न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहे समा तुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसै हर नाम। सगल सुख या नांद्या रोग समदर्शी पूर्ण निर्जोग आए ना जाए डोले कत नाही जा कह नाम बसै मन माही। दीन दयाल गोपाल गोविंद गुरमुख जपिए उतरै चिंद नानक कहो गुरदिया नाम संत संतन की टहलो संत का काम। राम कली महला पंजवां बीज मंत्र।

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम भाई राम कली महला पंजवां गहो कर।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठावर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझे। जाननहार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जनु अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

सदा आनंद न होवी सोग, कबु न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावे हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै न तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरी।

तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुझ में दूजा नाही कोए। तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म। तरण तारण प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा। तुझ में दूजा नाही ठाओ रहाओ, जप जप जीवा तेरा नाओ। आगे दरगे पावो ठाओ, दुख अंधेरा मन ते जाए। दुर्मत बिनसै

अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवे अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार। राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता। मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट तोट न आवे अंत नहीं हर पारावार। रहाओ कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन। भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत। कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया। दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। राम कली महला पंजवा महिमा ना जाने बेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर वखाने। रहाओ संकरा नहीं जाने पेव खोज तहारे देव देविया नहीं जाने मर्म। सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केलो आप बिछोरा आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेख है आखी। नहीं लेप तिस्पुन्ना पाप नानक का प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा किशु काज न कियो जान सुरत मत नाही किश ज्ञान। जाप ताप सील नहीं धर्म किशु ना जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर ना कोई भूले चूके प्रभ तेरे। रहाओ रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस सगला राधा है प्रभ गुण पास। नानक दास तेरे कुर्बान बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा राखन हर दयाल कोट पव खंडे निमख ख्याल। सगल अराधय जंत मिलिए प्रभ गुर मिलमंत। जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कड़कड़ कड़ राता मेरा प्रभ। रहाओ ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पय आनंद। तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊचे पार सुमत सार।

सेवा सगल सियान पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों वासा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टकाए अवरे आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान ता दरगह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पै दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवे सोई पल मान अपना तजा मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण ही सो आओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतरै पार देवनहार दा तार अंतना पारा वार जा कै कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवा दुलब दे सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुद होए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज।

बूढ़त लोहो साध संग तरह नानक शिक्षा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवां मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ करन कराम ने आप तिस को सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई कर किरपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते उजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान सर्व

नमो भगवंत गोसाई खालक रव रया सर्वठाई रहाओ जगनाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

लो हर चरण कमलो सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावै साई तना, रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे, काम क्रोध मसद ही चूरे, करै बेकार जिया रे कह ताई, गाफल संगनत सुवा जाई, तरत तोह अनक छल जानै, कौडी कौडी कौ खाक सिर शानै, जिन दिया तसेरा चेतै मूल, मिथ्या लोभना उतरै सूल, पार ब्रह्म जप भय दयाल, इह मन होवा सादरवाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै साज समाए, राम कली महला पंजवा, राजा राम की सरनाए, निरपो पय गोविंद गुण गावत, सा संग दुख जाए रहाओ, जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर धरै, सो दासा देसा काहे करै, जन मरण की चूकी कान, पूरे गुरु उपर कुर्बान, गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो पवजल तरै, अमृत पीवाओ साध प्यारे, मुखी उजर साचै दरबारे, अंध करो तज सगल बेकार, नानक हर जप उतरो पार, राम कली महला पंजवा, ईंदन ते बै संतर भागै, माटी कौ जल दै दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश, कटमै सिंध की ओ प्रगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमखना बिसरै जी, भगतन कै आठ

सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठगदा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। रामकली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लखमी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखै ठगौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेख धोए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देह तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन, एक

जाकै सिमरन दुरमत नासै पावै पद निर्बाना रहाओ। वडभागी ते जन कौ जानो जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै फुनबै कुण सिधावै अजा मलकौ अंतकाल मैं नारायण सुधियाई जांगत कौ जोगी सरबाहित सोगत क्षण मैं पाई नाहन गुण ना

प्रभु की जय। राम कली महल्ला पहला, अंतर उत्पुजे अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रभते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहि सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्हीं सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, करदर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया अवमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगह मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपुर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाओ, तुम शरणागत रहो।

मनसा मार मन सह समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्थाए ना पाई शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई बिन नामे होर पूजना होवी परम भुली लोकाई गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई पहाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई गुरमुख गावे आप गवावे दर सच ऐ शोभा पाई साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई पह भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक पेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी आंदन राते सहजे माते सहजे हम मैं मारी पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विचों आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी अपने भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम विचारी शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजे को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्द राती साचे नाए पे

किन्ही कुगर निर्त कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दिन हर हर हर त्याया, किन्ही सिद्ध बहुत चेटक लाए, किन्ही पेख बहुत हाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दिन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करे आचार सुकरणी, मोहे दिन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामे ओ मन ना प्रबोदे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतु करिया, माटी का ले देहरा करिया, उगत जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्व मैं जंतु राखिया, राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ, जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी।

सगले उदार, ज्यों पाव को संग सीत को नास, ऐसे प्राहितो संत संग बिनास, ज्यों साबनो कापर उज्जल होत, नाम जबतो सब ब्रह्म पौखोत, ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास, ज्यों कुरंक नाद कर्ण समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ताय आए चीत, दया तारी तिन तारनहार, बंधन ते होई छुटकार, सब था

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुर सच लाए।

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चल है जिन्ना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाए हे से हर हर सदा त्यावहे। जिसनों कथा सुना है अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कहे नानक सच्चे साहेब जो पावे तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया जिन तुरों लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करै गल्ला गली किनै ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सवाईया। कहिंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हरार त्याया। करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कुमाए। सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए, मन तोहवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाए।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछल ते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो वरदाह जियो पैज रखो हर जना केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रपाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिर नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए

गुण रंग राते तन ते जन्म जिन्नी एक मन त्याया, सफल जन्म भया तिनका जिन्नी सो प्रपाया, पुन दान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो, बिनमंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। सलोक उद्दम अगम्या गोचरो चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार, संत सरण साजन परो स्वामी समरानंत, सूके ते हरियाथिया नानक जप भगवंत। शंत रुत सरस बसंत महा, चेत वैसाख सुख माख जियो, हर जियो नाहो मिलिया मौलिया मंतन सास जियो, कर नाहो निहचर अंध सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुख सुजान बेता गुण गोविंद मुल्लिया, वड पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आह जियो, बिनवंत नानक सरण तेरी मिटी जमकी त्रास जियो। सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक, कोमल बंधन बांधिया नानक करम लेख, जो पाणे से मेलिया विछोड़े पिया, नानक प्रभ सरनागति जा कावड़ प्रताप। शंत ग्रीख मरुत

बुझाए। वणज वापार वणज वापारी विण नावे कैसी पतसारी। गुण विचारे ज्ञानी सोए गुण में ज्ञान प्राप्त होए। गुणदाता विरला संसार साची करनी गुर विचार। अगम या गोचर कीमत नहीं पाए ता मिलिए जा लय मिलाए। गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिली है मीत। काम क्रोध काया कौ गल जो कंचन सोहा गाटल। कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ वनीस चढ़ाओ। जगत पशु अंकाल कसाई कर कर तय करनी कर पाई। जिन कीती तन कीमत पाई होर क्या कही है किश कहन ना जाई। खोजत खोजत अम

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचै हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए, ज्यो पावै त्यो राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलै तत जै समावा, जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिए बीसा कीस। चख बोलन

तुम आई। क्यों तत्तै अवगत पावै गुरमुख लगे प्यारो, आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहै समाई, पूरे गुरते साच कमावै गत मित सब दे पाई। आद कौ बिस्माद विचार कथिया ले सुन निरंतर वास लिया, अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले कट कट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै जी जुगत सच जाणै सोई, आप मेट निराल मोहवै अंतर साच योगी कहियै सोई। अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचै परम पद पाईऐ साचै शब्द समाए लिया। एक कहो सच एका जाणै हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाणै अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरै ता सबके सूजै अंतर जाणै सर्व दया, नानक ता को मिलै वडाई आप पछाणै सर्व जिया। साचो

आवा गौण मिटै गुरसबदी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तारन हारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जम की कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हौं मैं जाल समाई गुरमुख तरती साचै साजी तिसमै उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावै मुख द्वार नाम रते त्रिपवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ठ होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नामै बोले सब वेकार नानक नाम रते तिन कहो जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाए जोग जोग तो सच रहे समाए बारह मैं जोगी परमाए सन्यासी शे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय दे विचार नानक वड्डे सेवड पागी जिनी सच रखिया उतार गुरमुख रतन लह लिव लाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मनपति आए गुरमुख अलख लखाए तिस पावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नामदान इशनान गुरमुख लागै सहि ध्यान गुरमुख पावै दरगै मान गुरमुख पौ पंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै कट कट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर परमै आवै जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसै मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिलै तिस पार उतारै अवगुण मिटै गुण निस्तारै मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरम कदे ना आवै हार
ਤਨ ਹਟੜੀ ਉਹ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੇਤ ਬਿਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣ, ਭੇਦ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੁੜਤੇ ਤੀ ਸਿਉਦਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ

सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई पवन का वासा सोन्य वासा अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै विचों परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी ना मोह मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरिया एत उत एको जाने, चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाण। त्रै सत अंगल वाई अवधू सुन सच आहारो, गुरमुख बोले तत् बिरोले चीने लख्या पारो। त्रै गुण मेटे शब्द वसाए ता मन चूके अहंकारो, अंतर बाहर एको जाने ता हर नाम लगे प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझे जा आपे लख लखाए, नानक तह ते उपर साचा सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथिया ले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवधू सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवे अवधू हम मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित आसर रही है कित भोजन तृप्ता सै, नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल नंग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जर बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रह तौ नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अग्निवारी अप्यो पियो आत्म सुखतारी। सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक पूजै को विचारी। एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना। कहां बसै सो शब्द अवधू ता को चूकै मन का पवना। नदर करे ता सतगुर मेले तानी कर वासा, एहो मन पाए आपै आप खाए ता निर्मल होवै। तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै। गुरमुख हो मैं विचों खोवै तव नानक सहि समावै। एहो मन निहचल हिरदै वसियले गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन कर आसन बैसै गुरमुख खोज तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै त्रिपवन ज्योत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी विरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै सच रपै रंग कबहू ना जावै। जा एहो हिरदा देह ना होती तौ मन कैठै रहता। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता पवन कवन कर सहिता। रूप ना हो तो रेख ना काई ता शब्द कहां लिवलाई। रकत बिंद की मड़ी ना होती मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी क्यों कर जाप साचा। नानक नाम रते बैरागी इब तब साचो साचा। हिरदा देह ना होती अवधू तव मन सुन रह बैरागी। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो ता निज घर बसतो पवन अनुरागी। रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकलीन रहतौ शब्द सोसार। गौन गगन जब तबै ना होतौ त्रिपवन ज्योत आपे निरंकार। वर्ण पेख असरूप सो एको एको शब्द विडाणी। साच बिना सूचा को नाही नानक कथ कहानी। कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई। हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरिया दुख पाई। गुरमुख होवै सो ज्ञान तत् विचारै हम मैं शब्द जलाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच रह समाए।
ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਜੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪੀਜੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਆ ਜਨਮ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਗੈ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਸ਼ਬਦੈ ਕਾ।

पौड़ी वेकी सृष्टि उपाइयन सब हुक्म आवै जाए समाही आपे वेख विकसदा दूजा को नाही जो पावै त्यों रख तू गुरशब्द बुझाही सबना तेरा जोर है ज्यो पावै त्वै चलाही तुद जेवड मैं नाहे को किस आख सुनाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा भरम भुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल सो सहो सांतना देवई क्या चलै तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याई है अंतर रखिए उरतार नानक घर बैठिया सब पाया जा कृपा कीती करतार। महला तीजा तंदा तावत दिन गया रैन गवाई सोए कूड़ बोल बिख खाया मन मुख चलिया रोए सिरे उपर जमडंड है दूजे पाए पत खोए हर नाम कदे ना चेत्यो फिर आवन जाना होए गुर प्रसादी हर मन मसै जमडंड ना लागे कोए नानक से जे मिल रहे कर्म प्राप्त होए पौड़ी एक अपनी सिफती लायन दे सतगुर मत्ती एक नानो नाओ बख्शियोन अस्त्र हर सती पौन पानी बै संतरो हुक्म करह भगती ए नानो पव अगला पूरी बणत बणती सब एको हुक्म वरतदा मन्या सुख पाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक कबीर कसौटी राम की झूठा टकै ना कोए राम कसौटी सो सह जो मर्जी वा होए। महला तीजा क्यों कर एहो मन मारी है क्यों कर मृतक होए कहया शब्द ना मान नहीं हम मैं छड़े ना कोए गुर प्रसादी हम मैं छुट्टे जीवन मुक्त सो होए नानक जिसनो बक्से तिस मिले तिस बिघन ना लागे कोए। महला तीजा जीवत मरना सब को कह जीवन मुक्त क्यों होए पै का संजम जे करे दारू पाओ लाए आन दिन गुण गावे सुख सहजे बिख पवजल नाम तरे नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी दूजा पाओ रचाए उन त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय अन हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझे बिचारा सब किस तेरा खेल है सच सृजनहारा जिस पावै तिस बख्श लहै सच शब्द।

पूला सब तीर्थ गह ओह तपा कैसे परम गत लह। गुरप्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोख अंतर पावे। महला तीजा सो तपा जे हो तप काले सतगुर नो मिले शब्द संभाले। सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावे मान। पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमति कट चानना अनेर बिनासन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वाण त्रिण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण। सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई

अभ्यागत है ना आखियां ना जे पर कर भोजन करे ना उदर कारण अपने बहले पे करे ना। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे ना पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे ना। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है करमी पल्ले पाए नानक नौ निद पाई है जे चले तसैर जाए महला तीजा सहजे सतगुर ना सेवियो विच होमै जन्म विनाश रसना हरसना चखियो कमला होयो परगास बिख खादी मन मुख मुआ माया मोहे विनास इक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा ता होवै दसन दास ता अंदन सेवा करे सतगुरु की कबै न छोड़ै पास ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै त्यों विचे ग्रह उदास जन नानक करे कराया सबको ज्यों पावै तिवहार गुणतास पौड़ी छत्ती जोग वारसा आपे गणत कीनी आपे सिरट सब साजियां नू आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियां पाप पुन गणत गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी सब आपे आप वरतदा आपे बख्स मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला

जोगी गिरही जटा बिपूत, आगे पाछै रोवै पूत। जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सरशाई पाई। नानक काल का एहो प्रवान, आपे आखण आपे जान। महला पहला, हिंदू कह कर हिंदू आवै। सूत जनेऊ पड़ गल पावै, सूत पाए करे बुरियाई। नाता तोता थाए न पाई, मुसलमान करे वड्याई। विण गुर पीरै को थाए न पाई, राहो दसाए उथै को जाए। करनी बाजाओ पिस न पाए, जोगी कह कर जुगत दसाई। तित कारण कर मुंद्रा पाई, मुंद्रा पाए फिर संसार। जिथे किथे सृजनहार, जेते जीते ते वाटाऊ। चीरी आई टिल न काऊ, एथे जाने सो जाए सजाने। होर फकड़ हिंदू मुसलमान है, सबना

हर का मंदिर शरीर अत सोहना, हर हर नाम दिड़ मन मुखे आप खोआयन, माया मोह नित कड़ सबना साहब एक है, पूरे भाग पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरै, ना सत मुंड मुंडाई केसी, ना सत पड़िया देश फिरै, ना सत रुखी बिरखी पत्थर आप तशावै दुख सहै, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई घाओ चरै, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनो दे तस्याए मिलै, नानक तां को मिलै वडाई, जिस कट पीतर शब्द रवै, सब कट मेरे हौ सब ना अंदर, जिसे खुवाई तिस कौन कहै, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे भुलावै कौन, जिसे भुलाई पंध सिर तिसे दिखावै कौन।

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाव जे

निरंकार जो रह समाए, काहे भिखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने। मूर्ख का कहना, मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक मान ऐसा दुख, दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे, जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगेसिया, बैठा कड वही। तलबा पौसन आकिया, बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई। भीड़ी गली फही, कूड़ ने खुट्टे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै, किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी सालाही है, हर भगती रापै। सब मंतन हरिया होया, हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परस राम रोवै घर आया, अजय सो रोवै भिखिया खाए। ऐसी दरगह मिलै सजाए, रोवै राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवै दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवै पांडव पय मजूर। जिनके स्वामी रहत हदूर, रोवै जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी पया, रोवै शेख मसा एक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवै राजे कन पढ़ाए। कर कर मांगे भिखिया जाए, रोवै किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवै ज्ञान गवाए, बाली रोवै नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखै लाए, महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी, बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा, गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण माहे समाया। सच्ची बाणी सच है, सच मेल मिलाया। सब किश

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साद जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत परै प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सद ही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबै नाल कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तेण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्रै। सलोक महला पंजवा तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रते रंग गोविंद कै हौ।

माए ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करे, उल्ट तीर्थ मरे, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जाओ गोदावर जाइए, कुंभ जाओ केदार नाइए, गोमती सहस गऊ दान की जय। कोट जाओ तीर्थ करे, तन जाओ हिवाले गारे, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सरतऊ न पूजै। मन न की जय रोस, जमै ना दी जय दोष, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत्रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसै कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थाने क्या निशानी, तह बाजे सबदा नाहद बाणी, तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हृदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया भख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुवै हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यों गोष्ट करै। चौ मुख दीवा जो द्वार, पलु अंत मूल बिचकार, सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करतना मैं गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, ढुलके चवर शंख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान,
बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

बाता। तब कुशल खेम सब थियो, सा संग नानक परगासियो, आना ही रे बियो। नट महला पंजवा, जाको पई तुम्हारी तीर, जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हो मैं पीर रहाओ। तप्त बुजानी अमृत बानी, त्रिपते जो बारक खीर, मात पिता साजन संत मेरा है, संत सहाई वीर। खुले प्रम पीत मिले गोपाला, हीरे बेदे हीर, बिस्म पहे नानक जस गावत, ठाकर गुनी गहीर। नट महला पंजवा, अपना जन आपै आप उधारियो, आठ पहरो जन कै संग बसियो, मनते नहीं बिसारियो रहाओ। बरन चेहन नाही किछ पेखियो, दास का कुल ना बिचारियो, कर कृपा नाम हर दियो, सह सुभाय सुवारियो। महाबिखम अगन का सागर, तिस्ते पार उतारियो, पेख पेख नानक बिकसानो, पुनः पुनः बलिहारियो। नट महला पंजवा, हर हर मन में नाम कहयो, कोट प्राद मिटैखिन पीतर, ताका दुख ना रहयो रहाओ। खोजत खोजत भयो बैरागी, साधु संग लहयो, सगल त्याग एक लिवलागी, हर हर चरण गहयो, कहत मुक्त सुनते निस्तारे, जो जो शरण पयो। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, कहो नानक अंध भयो। नट महला पंजवा, चरण कमल संग लागी डोरी, सुख सागर कर परम गत मोरी रहाओ। अंचला गहायो जाने अपने को, मन भी दो प्रेम की खोरी, जस गावत भगत रस उपजयो, माया की जाली तोरी। पूर्ण पूर रहे कृपा ने दो, आना पेखो होरी, नानक मेल लियो।

ते आठ पहर गुण गायन रहाओ। साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल ना लायण, दोए कर जोड़ नानक दान मांगे, तेरे दासन दा दसायण। नट महला पंजवा, मेरा सर्वस नाम निधान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान। क्या गुण तेरे आख वखाना, प्रभयंत्र जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुर्बान। नट महला पंजवा, हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ, मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते, दीना ना दयाल, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, नानक दर्शन हाल, नट पड़ताल महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे नीत, बिनसै दुख विपरीत, सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर पाज जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अष्टपदिया महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे, खिन पल रह न सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर, गुर के शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगै, मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो, प्रभ एको पुरख निरारे, सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यों गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया, सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे, सास सास सास है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन, सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी, मोको हरजन मेल प्यारे, नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा, राम हम पाथर निर्गुणियारे, कृपा कृपा कर गुरु मिलाए, हम पहन शब्द गुर तारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा, मैला गर्म लगारे, ना मैं सुरत वजी है दय दसो, हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनी के बचन समारे, गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी, तिस मिलिया संको तारे, सतगुर मिलिया परम पद पाया, हों सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर परमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे, हलत पलत दुखदाई होवे, जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवे दिन सियाल जल संभाले, बिख माया के बिस्थारे, आई रहन पया सुपनंतर, बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया, सब कूड़े के खलवारे, साग तनार सब पुख पुखाने।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जनो हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम मैं, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याई है हर हर मन जपिया हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेण न आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किलबिख काट, हर हर उर तारियो गुरपूरै मेरा सीस की जय गुरवाट रहाओ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपूरै गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावै। बहु कंचन दीजै कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लच लज पानी मटकी माट, कल युग गुरपूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे ललाट। जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करै जम सिर मार रहाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम पूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर होव ना सो होया को न मेटनहार। अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवते उदार रहाओ। जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर। जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै। जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप। जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कवलादास। जा कै सिमरन निद निदान, जा कै सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी। हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम रहाओ। बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत। जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख खीर। जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात। जैसे किरखै बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग। गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास।

और कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरा चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोह देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुरत जियो जास नाम दुख बिन से सोकियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जां कै दीवान बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हम बलिहार जास मिल होवै उधार नाम संग मन तन है रात नानक को प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किश अंत नाही पार रहाओ एक खिन है थाप यो थापदा कड़ पन करने हार जेत कीने पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजै मदर मदर तुन अनहत गाजै रहाओ तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण ओंडै कंबली तन तन तू माता देव की जय ग्रह रमैया कवलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेलै श्री नारायणा बिन बजावै गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रुपती अंबर ले त्यो बारी अले गोतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी
ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਕਟ ਕਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖੇ ਅਨੰਤਾ, ਔਰ ਤਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ, ਹੋਏ ਰਹਾਂ ਸੰਤੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਪੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ, ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰਥ ਪੀੜੇ, ਜਿਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਅੰਧਾ ਪਰਮ ਭੂਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰ ਫੋੜੇ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਮਾਏ।

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाव सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लून हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वड्याई, आज जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

तौ दीवाना जानिया जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिया जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिरे से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू देहे

जप हर हर नाम छिड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरे मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मल्लै जावै जियो माया मोह।

तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किल विख कट है हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो। जिसनो कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै। गुर प्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरपो निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो, हर सेवक नेड़ न जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया।

अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजे प्रभ जियो, जा दिन हर जस गाए रहाओ। पुत्र कलत्र गृह देख पसारा, इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पए उदमाते, हर हर कबो न गाए। एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ, मांगन कौ दान आए। त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरण आए, कहो नानक।

कवन चहन सुन ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा इनमें कमन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हो मैं पाई, जन मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई। बरन चेहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारै तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवा मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहेब सेवे अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आगे

पाती किया दिन सो सब राती वन त्रैणो त्र भवनो पानी चार बेचारे खानी खंड दीप सब लोवा एक वावै ते सब होवा करण हारा बूजो रे सतगुर मिले तासु जैरे रहाओ त्रै गुण किया पसारा नरक सुरग अवतारा हों मैं आवै जाई मन टिकन न पावै राई वाजगुरु गोबारा मिल सतगुर निस्तारा हां हां कर्म कुमाने ते बंद गलाने मेरी मेरी तारी ओहा पैर लोहारी सो गुर मिल एक पछाण जिस होवे पाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नै आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंत ना पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगया तो लाना मो रहाओ, अवगत स्यों मान्या मानो, गुरमुख तत् ज्ञानो, पेख सगल ध्यानो।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुर प्रसाद नानक बखान हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसै प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदपो हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राख लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राख बूध बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतु किया प्रभ करण कर नेक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथे खसम छडाए लया विचों गर्भ निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लया ने आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान हे आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम हे भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान हे एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जा कौ सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब होत सहाई जो संपत्ति अपनी करमानी छन में पई पराई कहो नानक ये सोच रही मन हर जस कबहू ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर ऊपर तब सोब तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट में जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंदन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ। मूर्ख सियाना एक है एक जो दोए नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मने नाही नाओ। गुरुद्वारे नाओ पाईए बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कै भाणे मन वसै ता अहनस।